0: FM ਬੈਂਡ 100.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਐਪ ਅਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
4: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में दो विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस चार विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूर इज्जुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज ते लाइव स्ट्रीम जरिए न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप ते ए आकाशवाणी दा पटियाला केंद्र है। समां ला लो सवेर दे 6:05 होए ने ते हुण वेला हो गया उस परमात्मा दी उस्तत करन दा। इसे संबंधी प्रोग्राम लैके हाजिर हां मैं जसविंदर सिंह सहगल ते आओ सुन रहे हां प्रोग्राम अमृतवाणी।
5: अमृत वाणी

पिया मोरी रग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं, एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से, अब रंग भी शाम है और पिया भी शाम है। तो शब्दों की सुंदरता देखें।

श्री राम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

0: FM band 106.2 MHz ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ੋਨ AIR ਐਪ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथन

0: लगभग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और जेनेल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़दीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 100.2 MHz ते लाइव स्ट्रीम जरिए न्यूज़ जोन एआईआर ऐप ते ए आकाशवाणी दा पटियाला केंद्र है। सवेर दे 7:05 होए ने ते हुण पेश है खेतीबाड़ी नाल संबंधित प्रोग्राम खेती नुक्ते। आए दे इस खेती नुक्ते प्रोग्राम दा विषय है पशुओं लई तूड़ी दी सही वरतो। इस विषय ते गलबात कर रहे ने धर्मेंद्र संधू जी।
3: किसान वीरो ते किसान भैणों, धर्मेंद्र संधू वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। किसान वीरो, तुहाडे फसली रुझेवें जारी ने। तुसी कणक दी फसल संभाल लई है ते हुण तुसी तूड़ी दा प्रबंधन कर रहे हो। तूड़ी पशुआं वास्ते काफ़ी लाहेवंद हुंदी है। कणक दी नवीं तूड़ी वरतन दे कुछ सुरक्षित तरीकों बारे तुहाडे नाल गल्लबात करांगे। किसान वीरो, ताज़ी कणक दी तूड़ी पंजाब दे विच सुक्के चारे दा सब तो मुख स्रोत है। हालांकि इस विच पौष्टिक तत्तां दी कमी हुंदी है, पर जेकर इस नूं सही तरीके नाल वरत्या जावे तां पशुआं दे पाचन ते दुध उत्पादन दे विच इह अहम भूमिका निभाउंदी है। तूड़ी दी महत्ता ते बनतर बारे गल करिए तां कणक दी तूड़ी दे विच फाइबर बहुत ज़्यादा हुंदा है जो पशुआं दी जुगाली लई जरूरी है। जुगाली करन नाल पशु दे मूंह दे विच लार बनदी है जो पेट विच तेज़ाबीपन नूं रोकदी है, पर ताज़ी तूड़ी दे विच प्रोटीन ते खनिजां दी मात्रा बहुत घट हुंदी है। इस लई ताज़ी तूड़ी नूं कदे वी इकल्ली नहीं पाउणा चाहीदा। इस नूं हमेशा हरे चारे दे नाल रला के पाउणा चाहीदा है जिहदे विच तुसीं बरसीम, मक्की, लूसण, राई का, जवी जां चरी दी वरतों कर सकदे हो। तूड़ी दे आकार दा ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तूड़ी बनाउण वेले इस दे आकार वल विशेष ध्यान देना चाहीदा है। दुधारू पशुआं लई तूड़ी 1 तों 2 इंच लंबी होनी चाहीदी है। मोटी तूड़ी पेट दीआं मासपेशियां नूं मजबूत करदी है ते पाचन प्रणाली नूं सही रखदी है। जेकर तूड़ी बहुत बरीक होवेगी तां पशु दे पेट विचों बिना पचे तेजी दे नाल बाहर निकल जावेगी। इस नाल पशु नूं पूरा पोषण नहीं मिलदा ते फैट दी मात्रा भी घट जांदी है। ताज़ी तूड़ी दे विच सिलिका ज़्यादा हुंदा है जो दुध उत्पादन दे विच रुकावट पा सकता है। इसलिए रोज़ाना पशु की खुराक दे विच 50 तों 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर जरूर मिलाओ। तूड़ी दे नाल सधारण नमक देन दे नाल पशु नूं प्यास ज़्यादा लगती है ते पानी वध पींदा है जो कि दुध वधाउण लई सहायक है। तूड़ी की संभाल हुण तुसीं करनी है। वख-वख तरीकों दे नाल तुसीं तूड़ी नूं स्टोर करना है। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉੱਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਲੀ ਵਾਲੀ ਤੂੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ, ਕੰਕਰ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੈਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੂੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਤੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5-7% ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।
4: ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਡ੍ਰਿਪ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤੀਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

0: कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है।
1: प्रोग्राम गुड मॉर्निंग मालवा चाओ तो हड्डे नाल हुण जानकारी सांझी करदी आ। अज दे दिन विच की है खास जा केड़ी अजिही घटना है जिहड़ी अज दे इतिहास दे पन्नियां दे विच दर्ज है। तुहानू दस दईए कि अज असीं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन सोसाइटी डे भाव विश्व दूर संचार अते सूचना समाज दिवस मना रहे हां। यह हर साल 27 मई नूं इंटरनेट अते सूचना अते संचार तकनोलॉजी के फायदों बारे जागरूकता पैदा करन दे लई मनाया जांदा है। ये 1865 ईस्वी अंतरराष्ट्रीय दूर संचार यूनियन की स्थापना की याद भी दवाउंदा है। ते अज दे दिन असी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मना रहे हैं। विश्व हाइपरटेंशन दिवस हर साल अज दे ही दिन 17 मई नूं मनाया जांदा है ता जो हाई ब्लड प्रेशर के खतरों बारे विश्वव्यापी जागरूकता पैदा की जा सके जो कि दुनिया भर के समय तो पहला मौत का प्रमुख रोकथाम कारण है। अते इस साल 2026 का थीम इकट्ठे हाइपरटेंशन नूं कंट्रोल करना है जो कि मरीजा भाईचारिया अते सरकारा नूं इस बीमारी के प्रबंधन लई सांझे यतना की अपील करता है। जेकर असी हाइपरटेंशन की गल करिए इस नूं काबू करन दे भी कुछ तरीके ने, पर ये तरीके सुनने तो पहला असी तुहाडे नाल एक गल सांझी कर दईए भी इन्हां तरीकों नूं सिर्फ आम जानकारी वजों लिया जाए तो इस नूं किसी भी डाक्टरी सलाह वजों ना लिया जाए। तुहानूं दस दईए कि इस नूं घट करन दे लई नमक घट खाणा चाहीदा, खाने दे विच भी नमक घट ही खाना चाहिए। इस तो इलावा चिप्स अचार फास्ट फूड अते पैकड फूडा दी वरतों घट करनी चाहिए है। सेहतमंद खुराक जिमें फल अते सब्जियां वध खानिया चाहिए ने, दालां होलग्रीन अते सुके मेवे खाने चाहिए ने, तलिया होया अते तेल वाला खाना घट करना चाहिए। इस तो इलावा हर रोज़ घट्टो घट 30 मिनट तुरना जा हल्की जी कसरत करनी चाहिए है। अते जे वजन वध है तो थोड़ा घटाउना ब्लड प्रैशर दे लई फायदेमंद हुंदा है। सिगरट ते शराब दिल दे लई नुकसानदायक ने। अपनी नींद पूरी करो, ध्यान योगा अते डूंगी साह लैण वालियां कसरतां करो। इस तो इलावा अगर तुसी ज़्यादा संक्रमित हो तो डाक्टरी सलाह भी जरूर लो अते नियमित तौर पर जो भी दवाइयां तुहानूं डाक्टर वल्लों लिखिया जांदियां ने तां उह जरूर खाओ ते इस दे नाल ही अपना ब्लड प्रैशर है वह चैक करवाउंदे रहो। सो ये जानकारी जे तुहानूं वधिया लगी होवे तां अपने विचार जरूर सांझे करना ते इस दे नाल ही असीं तुहानूं दस दईए कि ये जिहड़ी जानकारी तुहाडे नाल सांझी कीती है इस नूं डाक्टरी सलाह वजों ना लिया जाए। तो आओ हुण प्रोग्राम दे विच वेला हो गया गीत दा, आओ गीत सुनदे आं कैलाश खेर ते साथियां दीआं आवाज़ां।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: तीनों कॉलेज विच
2: चिंता ना कर
1: फीस ना देखो
3: हे हे ये आला है क्यों है
2: फीस ते चिंता
1: राहुल दा बैंक अकाउंट दा है ही ता रस्ता क्लियर बैंक तो लोड़ींदा स्टूडेंट एजुकेशन लोन आसानी नाल मिल जावेगा अते 4 लाख तक नो कोलेटरल ओ किथे है मिठाई
4: आरबीआई कहिंदा है
5: करो सही शुरुआत बनो वित्तीय तौर ते स्मार्ट
6: प्रोग्राम दे विच आओ की सुनदे आ उस्ताद पूरन चंद मंडाली ते लखविंदर वडाली दियां आवाज़ां च

0: FM ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನ್ಯೂಸ್ ಓನ್ ಇಐಆರ್ ਐਪ ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲ ਕਰੋ ਉਡੀਕ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का

0: सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश

0: भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन मूल्य करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है।

0: भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूरसंचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare, and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
2: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said, democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said, India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
3: Bharat or

0: return 11th century Chola era plates to India. The Tribune, calling it a moment heavy with history and symbolism, writes that the Leiden University announced its decision to return the plates after an official inquiry concluded that they were taken during the Dutch colonial rule without the consent of their rightful custodians. And finally, an elephant has given birth to twin calves at the Corbett Tiger Reserve, reports Hindustan Time. Wildlife experts have described it as a rare event among elephants. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart, Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. Archaeological survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhochala Temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा, पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते नीदरलैंड दे प्रधानमंत्री रॉब जेटन विचकार विचार वटांदरे तो बाद दोवां मुल्कां ने दुवल्ले संबंधां नूं रणनीतिक भाईवाली दे पद्धर तक वधाउण लई सहमति जाहर कीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज स्वीडन के दो दिन दौरे ते गोथेनबर्ग पहुंचणगे। मध्य प्रदेश उच्च अदालत के फैसले तो बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पोर्टशाला विच हिंदुओं के निर्विघन दाखले की इजाजत दी। सरकार ने चांदी की दरामद ते पाबंदी लगाई, इसनूं मुक्त तो पाबंदीशुदा श्रेणी च रखिया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी विच हवाबाजी टर्बाइन ईंधन ते वैट नूं 25% तो घटा के 7% करन दा फैसला लिया। अते बैंकॉक च थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट विच मर्द डबल्स फाइनल च अज भारत दे सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी दा मुकाबला इंडोनेशिया दी जोड़ी नाल होवेगा। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते नीदरलैंड दे प्रधानमंत्री रॉब जेटन दरम्यान हेग च व्यापक विचार वटांदरे तो बाद दोवें देश अपने दुवल्ले संबंधां नूं रणनीतिक भाईवाली दे पद्धर तक उचा चुकण लई सहमत होए ने। इस गल्लबात दौरान दोवां नेतावां ने व्यापार, रक्षा तकनालोजी, पाणी प्रबंधन, साफ ऊर्जा, सेहत संभाल ते सिक्ख्या समेत वख-वख खेतरां च सहयोग की समीख्या की। तरजीह खेतरां विच सहयोग नूं होर मजबूत करन लई कई समझौतियां ते हस्ताक्षर भी कीते गए। संबंधां नूं रणनीतिक भाईवाली तक उचा चुकण दा ऐलान करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र कीता कि भारत नीदरलैंड संबंधां ने पिछले दहाके च महत्वपूर्ण प्रगति कीती है। श्री मोदी ने कहा,
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
2: श्री मोदी ने नीदरलैंड नूं भारत दे मुख यूरोपियन भाईवालां विचों एक दस्या। उन्हां कहा कि दोवां मुल्कां दरमियान संबंध सांझे लोकतंत्री कदरां कीमतां, मजबूत आर्थिक सहयोग ते मजबूत लोकां तों लोकां दे संबंधां ते आधारित ने। जल प्रबंधन, सेहत संभाल ते सिक्ख्या वर्गे खेतरां च सहयोग दा हवाला दिंदिआं श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्री कदरां कीमतां, बाजार अर्थव्यवस्था ते जिम्मेवार व्यवहार साडे सांझे दृष्टिकोण दा हिस्सा ने। इस दौरान नीदरलैंड दे प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने भी भारत नाल संबंधां दे वाधे महत्व ते जोर दिता अते आर्थिक ते रणनीतिक खेतरां च मजबूत सहयोग दा समर्थन कीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड से अपने फेरी के दूजे दिन कई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस विच समुदायक संपर्क तो लैके नीदरलैंड के शाही परिवार नाल मुलाकात शामिल सी। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने एक सभ्याचारक समागम और चौल युग दियां तांबे दियां प्लेटां की भारत वापसी नाल संबंधित इतिहासक समागम च शिरकत की। प्रधानमंत्री की फेरी दौरान टाटा इलैक्ट्रॉनिक्स ने एक उगे सैमीकंडक्टर कंपनी ASML नाल समझौते ते दस्तखत किए। यह समझौता भारत के सैमीकंडक्टर निर्माण खेतर नूं मजबूत करेगा। समझौते के तहत ASML गुजरात के ढोलेरा च टाटा इलैक्ट्रॉनिक सैमीकंडक्टर निर्माण केंद्र की स्थापना ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਚ ਸਹਿਯੋਗ

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: फिल्म लावा फेरे चो सुनदियां रणजीत बावा दा गीत गाया प्राणे।

चित्रलोक। कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन रहे हैं लक बाय चांस फिल्म से, जावेद अख्तर के बोल, महालक्ष्मी अय्यर और अमित पॉल की आवाजें। म्यूजिक है शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम का अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में सईद कैदरी के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का, फिल्म है लूडो।

कार्यक्रम का अगला गाना जीरो फिल्म से। अब है जोधपुरकर की आवाज में इरशाद कामिल के बोल, अजय अतुल का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: कार्यक्रम का अगला गाना मेट्रो इन दिनों फिल्म से पेपॉन की आवाज बोल है गालिब के और म्यूजिक प्रीतम का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना द स्काई इज पिंक फिल्म से अरिजीत सिंह और निखिल डिसूजा की आवाजों में गुलजार के बोल प्रीतम का म्यूजिक।

अरिजीत सिंह और निखिल डिसूजा के साथ आप सुन रहे थे अंतरा मित्रा की आवाज। आज के चित्रलोक कार्यक्रम को और इस रोमांचक सप्ताह को देते हैं एक हैप्पी एंडिंग। 30 मार्खा फिल्म के इस गाने के साथ अभिजीत सावंत, हर्षित सक्सेना, प्राजक्ता शुक्री की आवाजों में अन्विता दत्त के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा, जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों

शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी, मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट होटलों में गूंजने लगी।

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उदास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए। कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी।

अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आमिर खान द्वारा निर्माता निर्देशक की गई फिल्म तारे ज़मीं पर 2008 दे रिलीज की गई, जिस 8 साल दे डिसलैक्सिक बच्चे कला का हुनर तो होंगे पर पढ़ाई दे विच कमजोर होंगे। बच्चों नूं प्रेरणा दिंदी है फिल्म कई अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी है। 2008 का सर्वोत्तम फिल्म पुरस्कार भी इस दे सिर ते है।

0: हेलो।
1: हाँ जी, सत श्री अकाल भैन जी।
0: सत श्री अकाल जी। नाम दस दो अपना।
1: नाम मेरा जोगिंदर सिंह है जी, पिंड सौजा, तहसील नाभा, जिला पटियाला जी।
0: जी, ते प्रोग्राम च केड़ा गीत सुनोगे?
1: सानू सुना दो जी, प्रकाश कौर सुरेंद्र कौर का गाया हुआ काला डोरिया कुंडे ना अड़े हुए।
0: जी ठीक है जी, सुनवा रहे हैं। थोड़ी फरमाइश से गीत कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अच्छा जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी।

0: मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो सत श्री अकाल जी। जी किसी कारण करके उन्हां दी आवाज़ साडे तक पूरी नहीं आ पा रही ते उन्हां दी पसंद ते सुनदे हां लालचंद यमला जट दा एक गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, सत श्री अकाल मैडम जी।
0: सत श्री अकाल जी। नाम दस दो अपना।
1: करनैल सिंह, पिंड मवी कला, तहसील समाणा, जिला पटियाला तो बोलना जी।
0: ठीक है जी, केड़ा गीत सुनोगे?
1: जुत्ती कसूरी पैरी ना पूरी हायर बाबे सानू तुरना पिया।
0: ठीक है जी, सुनवा रहे हैं तुहाडी पसंद दे गीत। कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है मैडम जी, ओके ओके।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता आरबीआई दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। आरबीआई कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
2: हेलो
3: हेलो मैडम नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, नाम दस दो अपना।
3: हाँ जी, रिशपाल सिंह बड़ा, पिंड खरकड़ा जिला कैथल।
2: ठीक है जी, ते केड़ा गीत सुनोगे?
3: मेरा साथी बाल सिंह वड़ैच, पिंड चक्कू दाना।

0: आवाज विश्वास अते विरासत ते 90 साल दी कहानी आकाशवाणी
1: प्रोग्राम चल रहा जी हिंदी जायका ते इस प्रोग्राम तहत शामिल होने वास्ते सानू मैसेज भेजते ने झज्जर हरियाणा तो बिटू पाटिया ते रीटा पाटिया दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर तो प्रतीक रोशनी ते परांजल लाई कोटावा नारायणपुर नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया तो ओम प्रकाश ऊषा अमित ते हैप्पी राय आजाद नगर लक्षर हरिद्वार तो ताज मुहम्मद गुलाम साबीर ते महराज जहां पिंड रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश तो उदयवान जय हिंद दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश दिव्यांश ते पूरा ही इन्हों का बघेल परिवार सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा रितिक प्रतीक अनिल जयवीर अमनदीप कालका तो शुभचंद्र साहिल ते बिट्टा बजाज मेरठ कैंट तो दिग्दर्शन ते कविता गौड़ दत्रेगी बाटाबारा छत्तीसगढ़ तो हीरामणि पारसमणि पुष्पिंद्र ते नौखे लाल वर्मा श्री फतेहगढ़ साहब तो रामनाथ हथापुर सुखमनजीत सिंह ते सहजप्रीत कौर पिंड जाखोद राजस्थान तो शंभूदयाल खटक विमला देवी अमरजीत सुंदर लाल योगेश दीपक ते पूजा खटक पिंड मौणवाल तो मास्टर मनसब अली नंबरदार चौधरी अली शेर मुहम्मद बिलाल उस्मान तकीर शांत तकीर हसन तनवीर ते एएस सग्गू भागवत तो संजय टिंगिया नमन ते अपार टिंगिया पिंड उंगाला जिला अंबाला हरियाणा तो राजेंद्र कुमार मलकीत राघव आरती हरमन ते पूरा ही इन्हों का परिवार रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो लालगिरी हेमलता हीना हर्षित ते खुशी जलालाबाद पछमी तो सुरेश गगनेजा पूनम विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा पिंड नंगल खेड़ा नेड़े फगवाड़ा तो बालकृष्ण शर्मा प्रवीन मुनीश ते राहुल शर्मा पिंड हीरावली फजिलका तो सुभाष गोदारा बिमला इंदू पार्वती ते हिमांशु गोदारा

मेरे प्यारे दोस्तों, सब तो पहला प्यार परी सत श्री अकाल। मेरा नाम गुणजीत कौर, मैं प्लस टू ई दी विद्यार्थन हाँ। आज मेरे बोलन का विषय नशा है। मनुख सारी उम्र धन कमाउन विच व्यस्त रहिंदा है, पर साडे लई सब तो वड्डा धन साडी सेहत है। किसी ने सही किया है कि सेहत ही खजाना है। इस गल नूं जानदे होए भी बहुत लोग अपनी सेहत नाल खिलवाड़ करदे हन, नशे करन लग जांदे हन। नशा साडी सेहत दा दुश्मन है। नशियां दी व्यापक वरतों नाल समाज विच चिंता दा विशा बन गया है। पात पात दे नशे वरते जाण नाल सेहत, आचरण, पैसे अते सुरक्षा दे खतरे पैदा हो रहे हन। जदों नशे दी आदत लग जांदी है तां इस नूं छड्डना बहुत मुश्किल हो जांदा है। नौजवान वर्गे जो कि साडे देश दा भविख मन्या जांदा है, ओह सब तो ज्यादा नशे विच डुब्बिया होया है। इस दे खिलाफ सख्त कदम उठाउण दी जरूरत है। नशा रहत समाज कोश नूं तरक्की दे रस्ते ते लै जावेगा। नशा दी रोको सरदारी, नहीं तां रुकेगी कम उसारी। धन्यवाद। आओ प्रोग्राम दे विच रुकदे हां एक गीत दे लई।

0: ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਰੋ ਯਤਨ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਚਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ।
1: FM ਬੈਂਡ 100.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ੋਨ AIRF ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ। ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲ ਕਰੋ ਉਡੀਕ।
2: ਯੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15%

0: कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेडू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 100.2 MHz ते असी आकाशवाणी दे पटियाला केंद्र तो बोल रहे हां। साडे प्रोग्राम तुसी लाइव स्ट्रीमिंग जरिए न्यूज ऑन AIR ऐप ते भी सुन सकते हो। समा मिलाओ इस वेले ठीक दोपहर दे 12:05 हो रहे ने। पेश है भैणां दा रोजाना प्रोग्राम नारी लोक।

0: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़।
1: ओ दीदी, बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, हुणे फोन कर दे दीदी।
0: बिना नंबर दी जांच किते? अक्सर धोखेबाज जाली बैंक वैबसाइटा ते जाली नंबरां नाल पैसे ठगदे हन।
1: तां फिर सही नंबर
0: बैंक दी अधिकारिक वैबसाइट जां ते कार्ड ते।
1: तुसी दा बचा लिया दीदी।
0: काम तो नहीं
1: कर रहे हैं जी।
2: आरबीआई कहंदा है
3: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा।
4: जी, अगला गीत सुनने लई सानू फरमाइश भेज रहे ने ननियोला अंबाला तो रंजीत, रुपिंदर ते किरणदीप रोयला। सुरंदी बाजार पटियाला तो फरमाइश सानू भेज रहे ने कांता राणी, रहेजा, नीतू, ज्योति, तृप्ता ते सजनी। आओ सुनदे आ इन्हां दी फरमाइश तेगी।

जी प्रोग्राम चल रहा है जी नारी लोक ते अगले गीत लई सानू फरमाइश भेज रहे ने मुक्तसर तो बलजिंदर कौर रवनीत ते नीशू मसीता डब वाली तो मीनाक्षी सागर ते आओ सुनदे हैं इन्हां दी फरमाइश ते मिस पूजा दी आवाज़ च ये गीत।

जी प्रोग्राम चल रहा है जी नारी लोक, ते अगले गीत लई सानू फरमाइश भेज रहे ने प्रियंका, रेखा, शीतल, रुबीना, सारिका, किरण, सुनीता, आंचल, कुसुम। आओ सुनते हैं इन्हां दी फरमाइश ते मन्नत नूर दी आवाज़ च ये गीत। माफ़ करना, मन्नत नूर ते एमी विर्क दी आवाज़ च ये गीत।

जी प्रोग्राम चल रहे जी नारी लोग ते प्रोग्राम दे आखिरी गीत लिए सानू फरमाइश भेज रहे ने इंद्रगढ़ तो किरण भूषण सगरिया सरोज पीनू अते आरती आओ सुनदे हां इन्हां दी रली मिली फरमाइश ते मन्नत नूर दी आवाज़ च ये गीत।

0: तार कर लिया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच किया है कि मुढली जांच दौरान एक दोषी दे घरों एक होर हैंड ग्रेनेड भी बरामद होया है। उन्हें कहा कि तीनों दोषी एक विदेशी हैंडलर के निर्देशों से काम कर रहे सन और उन्होंने उस तो दो हैंड ग्रेनेड मिले ने। होर जांच जारी है। होशियारपुर के पिंड चक समाणा में हाल ही एक बच्चे के बोरवैल में डिगण की घटना के मद्देनज़र डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कल जिले भर में सारे खुले ते छड़े हुए बोरवैलों की तुरंत जांच अते सीलिंग के सख्त हुक्म जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म दिता कि पिंड अते शहरी खेतरां विच विस्तारपूर्ण सर्वेक्षण 7 दिन अंदर पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी हालत विच कोई भी खुला बोरवैल बिना ढक्के नहीं रहना चाहिए क्योंकि यह मनुखी जीवन खास करके बच्चों लिए गंभीर खतरा ने। जारी हुक्मां विच डीसी ने कहा कि सारे एसडीएम तहसीलदार बीडीओ नगर निगम नगर कौंसल ते होर विभाग अपने अपने खेतरां विच खुले अणवरते ते त्यागे हुए बोरवैलों की सांझी जांच करन। सारे विभागां नूं 7 दिन अंदर हुक्म की पालना की रिपोर्ट जमा कराने लई किया गया है। डीसी ने चेतावनी दी कि लापरवाही करन वाले खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ते एनडीआरएफ के निर्देशों मुताबिक खुले बोरवैलों नूं ढकना लाजमी है। आज विश्व हाइपरटेंशन पाव ब्लड प्रेशर दिवस है। इसका उद्देश्य विश्वव्यापी जागरूकता रोकथाम खोज ते हाई ब्लड प्रेशर ते नियंत्रण नूं उत्साहित करना है। इस साल का विषय है हाइपरटेंशन नूं रल के काबू करिए, नियमित तौर ते अपने ब्लड प्रेशर की जांच करो ते इस बीमारी नूं हराओ। सेहत विभाग केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मलेरिया विंग ने कल राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2026 मनाया। इस वरे का विषय डेंगू कंट्रोल लई भाईचारक हिस्सेदारी जांच करो सफाई करो अते टको रखा गया है। इस तहत शहर भर में कई गतिविधियां कराई गई जिन्हां विच डेंगू की रोकथाम ते इसते कंट्रोल लई सहुं चुकाउणा जागरूकता रैलियां जागरूकता भाषण घर घर सर्वेखण ते वातावरण नियंत्रण उपावां का प्रचार आदि शामिल ने। भाषा विभाग पंजाब वालों अपने मुख दफ्तर विखे महान पंजाबी सपूत श्री बलराज साहनी यादगारी समागम करवाया गया। बेहद भावपूर्ण अंदाज विच कराए गए इस समागम विच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे साबका डीन डॉक्टर रजिंदर पाल सिंह बराड़ ने उन्हां दी पंजाबी साहित्य नूं देण बारे विशेष भाषण राही चानना पाया। उग्गे फिल्म स्टार डॉक्टर हरजीत सिंह ने एक सफर एक दास्तान सिरलेख खेड बनाई दस्तावेजी फिल्म राही बलराज साहनी दे पंजाब प्रति मोह कला दी समाज लई भूमिका अते होरना पहलुआं बारे जानना पाया। इस मौके फिल्म दे निर्माण नाल जुड़े मैंबरां तो इलावा वड्डी गिणती विच साहित्यकार रंगकर्मी ते साहित्य प्रेमी हाजिर सन। डायरेक्टर भाषावां जसवंत सिंह जफर ने अपने स्वागती भाषण दौरान कहा कि बलराज साहनी एक धर्म निरपक्ष शख्सियत सन जिन्हां ने अपनी साहित्यक ते फिल्मी कृता राही हमेशा सांझीवालता भाईचारक इकसुरता ते समाजिक न्याय का होका दिता। मौसम विभाग ने पंजाब ते हरियाणा विच कई थावां ते 22 जून तक वध तो वध तापमान विच 4 तों 5 डिग्री सैलसीयस दा वाधा होण नाल गर्मी पैण दा येलो अलर्ट जारी करदिआं लोकां नूं इस तों बचा करन दी अपील कीती है। मौसम विभाग वल्लों जारी वेरव्यां मुताबिक अज तों 22 मई तक इन्हां दोवें सूबिआं समेत चंडीगढ़ विच तापमान वधेगा। पंजाब विच गर्मी नाल प्रभावित होने वाले जिलों विच फरीदकोट फाजिलका मुकतसर साहब मानसा बठिंडा गुरदासपुर ते फिरोजपुर मुख तौर ते शामिल ने। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म हुईयां। साडा एक्स हैंडल ए @EIRRN जलंधर। राष्ट्रीय खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर बाद 1:40 ते। नमस्कार।
1: FM बैंड 100.2 MHz ते असीं आकाशवाणी दे पटियाला केंद्र तों बोल रहे हां। साडे प्रोग्राम तुसीं लाइव स्ट्रीमिंग जरिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते भी सुन सकते हो। समां देखो इस वेले ठीक दोपहर दा 1:15 ते 35 सैकेंड हो रहे ने। पेश है प्रोग्राम नगमे दा बाकी हिस्सा ते प्रोग्राम लैके हाजिर है आनंदिता शर्मा। ते प्रोग्राम च गीत सुनने लई सानू फरमाइश भेज रहे ने करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर भुचो कैंचियां बठिंडा तों प्रेम सिंह जौड़ा मनजीत कौर जौड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर सिमरन दमन एकम ते अभिजोत महज गेट नाभा तो सोमदत्त कैरव ज्योति राणी ते गुरमंत गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मीका बलविंदर विरक जयतेग विरक ते मीका विरक आओ सुनदे हां इन्हां दी रली मिली फरमाइश।

जी प्रोग्राम चल रहा झिणक में, तुसीं जुड़े हो आकाशवाणी दे पटियाला केंद्र दे नाल। ते अगला गीत सुनने लई सानू फरमाइश भेज रहे ने पाटा पारा ततरंगी तो द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार ते श्रविंद्र कुमार वर्मा, रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तो शोभा नायक, जिला लुधियाना तो पुरानी मंडी मुलापुर तो राजेश जैन, अरुणा जैन, अभिषेक, गौतम, रसगुल्ला ते नगीना जैन। आओ सुनदे हां इन्हां सारयां दी रली मिली फरमाइश ते फिल्म फैशन चों एह गीत।

जी प्रोग्राम चल रहा है जी नगमे, ते अगले गीत लिए सानू फरमाइश भेज रहे ने मुल्लापुर मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन ते दीपक जैन। मंडी अहमदगढ़ तो बिट्टू राजा, नरेंद्र शर्मा, सविता शर्मा ते पुष्कर शर्मा। अंबरगढ़ तहसील शादूल शहर तो कुलवंत मान, लखविंदर मान, खुशप्रीत मान, गुरनूर, हरविंदर मान, राजा सिंह मान, कुलविंदर मान ते के एस मान। आओ सुनदे हैं इन्हां सारे दी रली मिली फरमाइश ते भूल भुलैया 3 फिल्म चों एक गीत।

0: भाई वसे हर बीमारी दूर ओथो नसे।
1: धार्मिक स्थाना, बस अड्डियां, हस्पतालां, डाकघरां, पार्कां, बाजारां, रेलवे स्टेशनां जां सरकारी दफ्तरां विच सफाई रखना साडा सारयां दा फर्ज है।
2: इस दे नाल ही प्रोग्राम नगमे खत्म करन दी आनंदिता शर्मा नूं दिओ इजाजत। FM बैंड 100.2 MHz ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਐਪ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਠੀਕ 1:40 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ 1:50 ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਰੋ ਕੁਝ ਪਲ ਉਡੀਕ।
3: आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तो स्वीडन के 2 दिन दौरे से गोटनबर्ग पहुंचे। भारत और नीदरलैंड अपने दुवाले संबंधों को रणनीतिक भाईवाली के पद्धर तक वधाने लई सहमत हो गए हैं। भारत ने कहा कि होरमूज स्टेट विच व्यापारक जहाजों ते हमले परवानयोग नहीं ने। जनगणना 2026 तहत 5 राज्यों विच मकानों की गिणती के पहले गेड़ का काम शुरू हो गया है। IPL क्रिकेट विच अज पंजाब किंग्स का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नाल ते राजस्थान रॉयल्स का दिल्ली कैपिटल्स नाल मुकाबला होगा। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗੋਟਨਬਰਗ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟੈਸਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੀਡਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟੈਸਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅਪਸ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ, ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਫੋਨ ਡੇਰ ਲੇਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ ਜੈਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
4: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
3: ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ।
5: ਹਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਕੋ ਭਾਰਤ ਕੇ ਸਬਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟਨਰ ਮੈਂ ਸੇ ਮਾਨਤੇ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਕੇ ਟੌਪ 5 ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਮੈਂ ਸੇ ਏਕ ਹੈ। हमारे हिस्टोरिकल, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोहों देशों नूं नवीनता, निवेश, निरंतर विकास और रक्षा खेत्रां विच अपने सहयोग नूं नवीं उचाइयां ते ले जाण दी लोड़ है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने भी भारत नाल संबंधां दी वधदी अहमियत ते जोर दिता ते आर्थिक अते रणनीतिक खेत्रां विच मजबूत सहयोग की हिमायत कीती। भारत ने कहा कि होरमूज स्ट्रेट विच व्यापारक जहाजों ते हमले परवानयोग नहीं ने। संयुक्त राष्ट्र विच भारत के स्थाई प्रतिनिधि परवथनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के मैंबरों नूं निशाना बनाना ते जहाज़ां दी स्वतंत्र आवाजाई विच रुकावट पाउणा जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह गल संयुक्त राष्ट्र आर्थिक ते समाजिक परिषद की आलमी ऊर्जा बारे एक विशेष मीटिंग विच कही। कुछ दिन पहला ओमान के तट ते एक भारतीय झंडे वाले जहाज़ ते हमला किया गया सी। जहाज़ ते चालक दल के सारे 14 मैंबरों नूं ओमानी अधिकारियों ने बचा लिया सी। यह जहाज़ सोमालिया तो आ रहा सी। इस साल के शुरू में खाड़ी क्षेत्र में टकराव शुरू होने तो बाद दो होर भारतीय झंडे वाले जहाज़ों पर भी हमला किया गया सी। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। जनगणना 2026 तहत 5 राज्यों में मकानों की गिनती के पहले गेड़ का काम शुरू हो गया है। इस तहत मकानों की सूची तैयार की जाएगी। फिलहाल यह काम राजस्थान, दिल्ली, मेघालय, महाराष्ट्र ते झारखंड में शुरू किया गया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा ते नगर हवेली, दमन ते दीव, मध्य प्रदेश ते तेलंगाना में भी घर घर जाके सूची तैयार करने का काम चल रहा है। हुण तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 तो वध घरां दे वसनीकां ने स्वै गणना प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह पहल जनगणना मुहिम नूं डिजिटाइजेशन करने विच एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट च जजां दी गिणती संबंधी सोध ऑर्डीनेंस 2026 नूं मंजूरी दे दित्ती है, जिस नाल चीफ जस्टिस तों इलावा सुप्रीम कोर्ट विच जजां दी मंजूर शुदा गिणती 33 तों वध के 37 हो गई है। कानून अते न्याय मंत्रालय दे एक नोटिफिकेशन अनुसार यह ऑर्डीनेंस सुप्रीम कोर्ट च जजां दी गिणती बारे एक्ट 1956 दी थां लेगा। इस सोध नाल चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट विच जजां दी कुल गिणती 38 हो गई है। केरला तो दिल्ली आ रही तिरुवंतापुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रैस के B1 कोच में अज सवेरे अग लग गई। हालांकि किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। कुछ रेल गड्डियां की आवाजाही प्रभावित हुई है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिछा और विक्रमगढ़ अलोट स्टेशन विचकार तड़के 5:20 हुई। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG दीयां कीमतां विच 1 रुपए का वाधा किया जो अज तों लागू हो गई ने। इस वाधे तों बाद दिल्ली विच CNG 80.09 रुपए प्रति किलो हो गई है। इस हफ्ते के शुरू विच भी IGL ने CNG दीयां कीमतां विच 2 रुपए प्रति किलो का वाधा किया सी। संयुक्त राष्ट्र के सकत्र जनरल एंटोनियो गुतरस ने वाशिंगटन में इसराइल ते लेबनान विचकार जंगबंदी 45 दिन वधाउण दे ऐलान का स्वागत किया है। श्री गुतरस ने संबंधित देशों को दुश्मनी खत्म करन अते हमले बंद करन अते अंतरराष्ट्रीय कानून अते अपनियां जिम्मेवारियां दी सही ढंग नाल पालना करन दी अपील कीती है। अमरीकी विदेश विभाग के बुलारे टॉमी पिकोट ने कल दोवां देशों विचकार जंगबंदी नूं वधाउण दा ऐलान कीता सी। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री पिकोट ने कहा कि अमरीकी विदेश विभाग 2 ते 3 जून नूं इस संबंध विच गलबात मुड़ शुरू करेगा। अज विश्व दूरसंचार ते सूचना समाज दिवस है। अज दे ही दिन 1865 विच पैरिस विच संयुक्त राष्ट्र की डिजिटल तकनोलॉजी एजेंसी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन की स्थापना की गई सी। इस दिन का उद्देश इंटरनेट अते संबंधित तकनोलॉजियां दी सकारात्मक वरतों नूं उत्साहित करना है। खेड जगत दीयां कुछ खबरां। IPL क्रिकेट विच अज धर्मशाला विच पंजाब किंग्स दा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नाल होएगा। यह मैच दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होएगा। एक होर मैच विच दिल्ली विच शामी 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स दा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स नाल होएगा। बैंकॉक विच थाईलैंड ओपन बैडमिंटन विच मर्दां दे डबल्स फाइनल विच भारत दे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ते चिराग शेट्टी दी जोड़ी नूं हार दा सामना करना पिया है। भारतीय जोड़ी इंडोनेशिया दे लियो रोली कारलैंडो ते डैनियल मार्टिन दी जोड़ी तों 12-21-23-25 नाल हार गई। यूक्रेन दी एलेना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन टेनिस महिला सिंगल्स दा खिताब जित लिया है। 7वां दर्जा प्राप्त एलिना ने फाइनल विच अमरीका की कोको गोफ नूं हराया। मर्दां दे फाइनल विच अज इटली दे जानिक सिनर दा मुकाबला नॉर्वे दे कैस्पर रूड नाल होएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रातीं 8:30 बजे खेडिया जाएगा। अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर सुन लो। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗੋਟਨਬਰਗ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਆਪਣੇ ਦਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਨਗਣਨਾ 2026 ਤਹਿਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਦਾ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਐਲੀਨਾ ਸਵਿਤੋਲੀਨਾ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਓਪਨ ਟੈਨਿਸ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अलाक्वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है और नेपाल के कोहपैमा

0: कामी रीटा शेरपा ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं मर्तबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में स्वीडन के 2 रोजा दौरे पर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं। इस साल जनवरी में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता होने के बाद से जनाब मोदी का यूरोप का ये पहला दौरा है। वजीर आजम मुत्तहिदा अरब अमारात और नीदरलैंड्स के दौरे के बाद स्वीडन जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: अपने इस दौरे में वजीर आजम मोदी स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टनसन से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान वो बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए इश्तराक के नए रास्ते तलाश करेंगे। दोनों रहनुमा माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की जानिब मुंतकली, मसनूई जहानत AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, मौसमियात के लिए इकदामात और अवाम से अवाम के राब्तों से मुतालिक शोबों में तावुन के बारे में भी तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा दोनों वज़ीरे आज़म यूरोपीय कमीशन की सदर इज्जत माब मोहतरमा उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोप के मुमताज कारोबारी रहनुमाओं के एक क्लीदी फोरम यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री से भी खिताब करेंगे। पूरे स्वीडन के कारोबारी घरानों में वजीर आजम मोदी के इस दौरे से काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है और वो इस दौरे के नतीजे से बहुत पुरउम्मीद हैं। स्वीडन के शहर गोथनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: वजीर आजम के दौरे के दूसरे मरहले में कल भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया था। नीदरलैंड्स के शहर हेग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हमनसब रोब जेटेन के दरमियान बातचीत के बाद ये इत्तेफाक राय हुआ। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर क्लीदी शोबों में इश्तराक बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों उजराए आजम ने मगरबी एशिया की सूरत हाल, खासतौर पर आलमी तवानाई सप्लाई निज़ाम और तजारती नेटवर्क में रुकावट पड़ने से खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में पड़ने वाले इसके संगीन मुजमिरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उमूरे दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मसनूई जहानत और डीप टेक को मुस्तकबिल की मईशत के अहम सुतून करार दिया है। वो आज अहमदाबाद में एक कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते हुए शोबे में एक सरकर्दा मुल्क बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: जनाब अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। वो आज गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के इनोवेशन और इंक्यूबेशन मरकज का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। मर्दुमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के लिए घर घर जाकर फील्ड कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है। इनमें राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन का इलाका शामिल है। पूरे मुल्क में जारी मर्दुमशुमारी के अमल के तहत ऐसा किया जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन, दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी मुतल्लिका अहलकार घर घर जाकर मकानों की फहरिस्तें तैयार कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाज रानी की आजादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निजाम के तहफ्फुज के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा इक्तसादी और सामाजिक काउंसिल की खसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओमान के साहिल के नजदीक भारतीय परचमबरदार कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले के चंद रोज

0: बाद जनाब हरीश का ये बयान सामने आया है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी के फूट पड़ने को अवामी सेहत से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तशवीश वाली हंगामी सूरत हाल करार दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम गेब्रेसिस ने 300 मुश्तबह केसों और 88 अमवात की खबर मिलने के बाद इस फैसले का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर WHO ने अलबत्ता इस बात की भी वजाहत की है कि एबोला फूट पड़ने का ये मामला COVID-19 आलमी वबा जितना मोहलिक नहीं है। इसके साथ ही उसने बैन अल-अक़वामी सरहदें बंद न करने की भी सलाह दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। आप भी टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 के जरिए इस प्रोग्राम के लिए अपनी राय और तजवीजें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप नरेंद्र मोदी ऐप या माई गोव ओपन फोरम के जरिए भी अपनी तजवीजें ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1922 पर मिस्ड कॉल करके SMS के जरिए मौसूल होने वाले लिंक को फॉलो करते हुए अपनी तजवीजें सीधे वजीर आजम को भेज सकते हैं। मन की बात के इस नशरिये के लिए तजवीजें इस महीने की 29 तारीख तक कबूल की जाएंगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमत में 1 रुपए का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में अब 1 किलोग्राम CNG 80.09 रुपए की होगी, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में इसकी कीमत 88.70 रुपए होगी। आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जांच कराएं। ये दिन हाइपरटेंशन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाना, इसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नेपाल के कोहपैमा कामी रीटा शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। 56 साला कोहपैमा ने दुनिया की बुलंदतरीन चोटी को सबसे ज्यादा बार सर करने का खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के कोशी सूबे के रहने वाले कामी रीटा ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट को सर करने में कामयाबी हासिल की थी। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अल-अक़वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: FMN 100.2 MHz ਤੇ ਸਿਆ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਐਪ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਮਿਲਾਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਫਰੋਸ਼। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਨੰਦਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ 30 ਚੋਂ।

0: हर वरे लखा लोग सड़क हादसों का शिकार होके जाना गवा दिंदे ने। तुहाडी ते तुहाडे परिवार की सुरक्षा तुहाडे अपने हाथ च है। ट्रैफिक दे नियमां दा पालन करो ते सुरक्षित अपनी मंजिल ते पहुंचो।
1: जी प्रोग्राम चल रहा है सरफरोश, तुसी जुड़े हुए आकाशवाणी के पटियाला केंद्र के नाल। आओ सुनते हैं प्रोग्राम चो अगला गीत फिल्म केसरी चो।

0: दोपहिया वाहन चलाउंदियां हेलमेट जरूर पाओ।
1: दोपहिया वाहन दे मगर बैठी सवारी ले भी हेलमेट पाउणा जरूरी है।
0: सड़क ते चलदियां आप भी बचो, दूजिया नूं भी बचाओ।
2: सड़क सुरक्षा सब दी सुरक्षा।
3: ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਫਿਲਮ ਗੁੰਡੇ ਚੋਂ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और

0: सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
2: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और

0: रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80 रुपये 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपये 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपये 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेर्पा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेर्पा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी दे पटियाला केंद्र तो बोल रहे हां। साडे प्रोग्राम तुसीं लाइव स्ट्रीमिंग जरिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते भी सुन सकते हो। समा इस वेले ठीक दोपहर दे 2:30 बज रहे ने। पेश है प्रोग्राम दो तेरियां दो मेरियां ते अज दा प्रोग्राम लैके हाजिर है आनंदिता शर्मा। ते अज दे प्रोग्राम दे वास्ते कोई विशा नहीं है ते खुल्लियां गल्लां अज दे प्रोग्राम च होणगियां। ते ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕਰਨਾ ਡਾਇਲ 2284-94 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। 0175 ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਨ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਗੀਤ।

0: हेलो
1: हेलो मैडम जी, सत श्री अकाल जी। मैडम
0: सत श्री अकाल जी, नाम दस दो, कौन थे, कितों गल कर रही हूँ?
1: जी, मैं बड़िया जा तो दर्शन सिंह सैनी बोल रहा है। मेरी पिछली तरीक 8-5 दिन शुक्रवार नूं पंधेर जी नाल गल हो जाए, सड़क सुरक्षा दिवस दी।
0: ठीक है जी, बहुत चंगी गल है। मतलब तुसी हफ्ते बाद ही फोन
1: मैं
0: कर रही
1: सोचा
0: हो
1: नहीं,
0: जी।
1: जानकारी बारे दसदा नहीं मैनूं, कहीं कहन देना तू पहला आउंदा। मैं कहा नहीं आउंदा, मैं
0: नहीं नहीं
1: नॉर्मल
0: जी, बहुत
1: दस बजे
0: चंगी
1: नाल
0: गल है कि
1: जाऊंगा।
0: आपा बाकी श्रोतियां नूं भी जिहड़ा है जुड़न दा मौका
1: मैं
0: दईए।
1: उन्हां नूं भी बेनती करदा, आपदी तारीख लिख लिया करो जी।
0: जी जी ठीक है जी। ते अज फिर जिवें कोई विशा
1: अच्छा
0: नहीं
1: पिछले
0: है
1: मैडम जी, मैं तो गल करना नहीं, दुनिया तो बहुत छैनी है जी मेरे नालों,
0: जी।
1: आपां किसे नूं की समझा सकदे हैं। मैं तो यह गल कहना जी, भी गर्मी का पूरा कहर है जी, हुण
0: हाँ जी
1: पंछियां नूं पानी थुल्ले
0: जी बिल्कुल
1: भर के मिट्टी की जरूरत रहो, जिथे जिथे भी वध तो वध धरे जाते हैं, एक दाणा चोगा जरूर पाओ जी,
0: जी, उही
1: रोटी
0: है
1: चूर के
0: जी।
1: पाओ जी उन्हां नूं, पंछियां नूं। साबतियां रोटियां ना पाओ, साबतियां रोटियां की दुर्दशा होंगी, चूर के पाओ जी।
0: जी
1: कहीं
0: बिल्कुल
1: सौंता ना मैं, साबतियां रोटियां ना गोल गोल उतरी जेड़ियां पड़ियां होंदियां ना, जानवरों तो खाधिया भी जाते हैं, वो
0: जी
1: विचों तो करांगे जी, करके उन्हों की भी सगों बर्बादी करते
0: जी
1: हैं,
0: उही है, अन्न दी बर्बादी होंदी है जी।
1: होंदी है जी। ते किसे ना किसे टाइम देखो, कई बंदे सड़क ते जाने जाते गिर जाते ने जी।
0: जी बिल्कुल
1: एक मिनट जी, मैं कितना करना मेरे सुनने वाले उन्होंने चक के ना, थोड़े अपने कोई स्टार नहीं गिरते ना मेरे गिरते ने, मैं चक के ना उन्होंने किसी सुरक्षित जगह से चूर के पा देना जी, रोटी जो कोई किसी दुर्दशा होंगी है, किसी पैरों थले होंगी है, टायरों थले होंगी है,
0: जी जी
1: जे
0: बिल्कुल
1: कोई देख भी लेंदा कोई अपन जी, कोई मेना नहीं हैगा जी, भी रोटी चक के पर चंगी सौ पा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल
1: ते
0: चंगी
1: अपने
0: गल
1: घर
0: है
1: च
0: कि
1: कोई
0: आपां
1: चोरी
0: नूं
1: आ
0: तां
1: गई
0: निरादर
1: है,
0: नहीं करना चाहिंदा जी।
1: निरादर नहीं करना चाहता जी, वो आदर करो, सत्कार करो, भोजन आ
0: जी
1: गए वो।
0: फिर तुसीं भी जिवें तुसीं कहा भी पशु पंक्षियां नूं जिहड़ा गर्मी बहुत हो गई है,
1: हाँ
0: उहनां नूं
1: मैडम
0: पाणी
1: जी, हाँ जी, हाँ मैडम जी, इसे गल तो तुमने तुम पूछा, मैं दस रहा जी, मैं 12-13 लीटर घरों पानी लेके जाना जी, दो
0: जी
1: कहनियां
0: जी
1: 6-6 लीटर वालियां,
0: हाँ जी हाँ जी
1: ते सवेरे धो के बाहर पिपला बरूटा थले, जिते जिते मेरे पक्के गाहक लगे हुए ने जी,
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: जिम्मे लोगों ने गाहक होंगे जी, मैं असि थोड़े लिसनर लगे हुए हैं जी
0: जी
1: पक्के,
0: जी बिल्कुल हाँ जी
1: इस तरह वो मेरे पक्के काट, मेरी पक्कियां ने दोस्त बनी है, मैंने कबूतर मेरे, उन्होंने मैं पानी काट, सारे मैं पानी पा दा मैं सवेरे,
0: जी,
1: नाले
0: बहुत
1: रोटी पा
0: चंगी
1: दी।
0: गल
1: हाँ जी,
0: है
1: 12-13 मैं कोई रब नहीं बन गया, मैं सारे यही सिखा दिना भी, भाई तुम भी इतने जितने हैगा, तुम वध पाओ,
0: जी जी ठीक है जी,
1: जिन्हें
0: कॉल करने लिए
1: बलोटियां
0: बहुत
1: थले गई
0: जी
1: पंजा दस तरीक रही, मैंने कूड़े करकट चक के, अपन कोई मेहना नहीं जी, कोई अपन देख भी लगा ना जी, कोई अपने स्टार नहीं करते जी, उन्होंने चंगे
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: पाओ जी।
0: सही गल है। आपां कोशिश करिए आपां भी जे कोई गिरी हुई रोटी आपां जिहड़ी पशु पंछियां नूं दे सकीए या जिहड़े जानवर ने ते उन्हूं असीं उहदा निरादर ना आए करिए जी।
1: मैं जी हाँ, अपन उस गल से खुशी मिलूगी। ठीक
0: ठीक है जी, कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: है, सत
0: सत
1: श्रीकाल जी
0: श्री
1: सारे
0: अकाल जी, सत
1: श्रोतिया।
0: श्री अकाल जी।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल जी।
0: जी नाम दस दो, कौन थे, कितों गल करदे हो
1: अशोक महाराज जी, घूमन कलोनी तो जी।
0: जी? ते फिर अज खुलियां गल्लां ने, तां किस विषय ते गल करोगे
1: आपां तां नशे वास्ते गल करदे आ मैडम जी।
0: जी?
1: नशा करना नहीं चाहिदा, नशे तो दूर रहे। अजकल नवे नवे मुंडे नशे करते पए है, तां
0: जी बिल्कुल सही गल है।
1: करके
0: जी, वही है कि
1: है जी।
0: 100 बार सोचो नशा करने तो पहला, क्योंकि एक बार बंदा एदे वाल चले जाता है फिर वापस मुड़ना बहुत औखा है।
1: मुड़ना पिया आता नहीं जी, मुड़ के आता नहीं वापस जी।
0: जी बिल्कुल सही गल है। ये नाल की हो रहा है कि आपां अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हैं, नाल नाल अपने घर दी जिंदगी भी खराब करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, घर के मां बाप नु तंग करते हैं जी, तां
0: जी, बिल्कुल सही गल है
1: करके है जी।
0: जी
1: जेड़ा नशे भर गया वो खत्म है जी बंदा।
0: जी जी ठीक है जी, कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत
0: सत श्री
1: शुक्रिया
0: अकाल
1: मैडम
0: जी,
1: जी, बहुत
0: सत
1: बहुत
0: श्री अकाल
1: शुक्रिया।
0: जी।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल जी। मैं बिट्टू शरीफ हो रही पहले तो जी। मैं
0: जी ते अज खुलियां गल्लां ने, फिर की गल करोगे अज?
1: दहेज पर था भाई,
0: जी
1: ना सानू दहेज लेना चाहिए था ना देना चाहिए। एक प्रथा बंद होनी चाहिए।
0: जी वैसे भी अजकल महंगाई इन्नी वध गई, आपां कहीए वी एक जना दे रहा ते असीं लै रहे हां, दहेज ये भी बहुत औखा है
1: हाँ जी, हाँ जी, ना लो जिससे ना
0: ना
1: दो।
0: दो। जी ठीक है जी, उही गल है, उम्मीद सानू नहीं रखनी चाहिए। आपां कोशिश करिए जिवें पहलां गल कर रहे हैं, कुदरत नू बचाइए ते जिवें बेटी पढ़ाइए बेटी बचाइए वी, ते
1: हाँ
0: नाल
1: जी, हाँ
0: ही
1: जी,
0: ये भी गल है कि आपां जे पढ़ावांगे तां देखो कुड़ियां कोई रुजगार भी लगनगियां, तां इस तों अच्छा वी चंगी यही
1: हाँ
0: गल है वी
1: जी,
0: आपां दाज प्रथा जिहड़ी है उहनू ना, मतलब समर्था करिए उहदी वी, आपां ना कहीए वी आपां दाज प्रथा लैणी है,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: चलदी रखनी है। जी
1: एक विआह दे विच शराब ना सेवन नहीं होना चाहिए, बंद होनी चाहिए। वैसा भी
0: जी
1: मतलब
0: जी जी बिल्कुल वही है कि ओदे नाल भी यही हुंदा कि उस टाइम थोड़ा कह लो भी ब्याह च आपां नूं पता भी नहीं लगदा भी किस वेले किसी ने की कहता, ते
1: हाँ
0: वो
1: जी, झगड़े
0: खुशी खुशी
1: वगैरह।
0: लड़ाई दा कारण बन जांदी है बाद विच।
1: हाँ जी, हाँ जी, एक
0: जी
1: पोलोथीन बंद होना चाहिए मैडम जी।
0: जी जी बिल्कुल, पॉलीथीन भी बंद होना चाहिए। कोशिश करिए असीं कोई भी समान लैन जा रहे हाँ तां
1: हाँ जी,
0: घरे
1: हाँ जी,
0: बने
1: पहले
0: हुए झोलियां दा असीं प्रयोग जरूर करिए।
1: आने वरतो करो जी।
0: जी जी ठीक है जी, कॉल करने लई बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया जी।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी। नाम दस दो अपना
1: नाम संत राम, पिंड बल्ला, डिस्ट्रिक्ट पटियाला जी। जी
0: जी। ते अज जिवें खुलियां गल्लां ने, कोई विशा नहीं है, ते अज किस विषय बारे गल करोगे
1: अच करेंगे गुस्से बारे जी।
0: जी? गुस्से बारे। ते गुस्सा वैसे भी अजकल देखिए कि हर छोटी छोटी गल ते ना लोगों को गुस्सा आन लग गया है
1: जी,
0: जी।
1: इस तरह मैडम जी मूहरों कोई बंदा बोल रहा ना,
0: हाँ जी
1: आप छोटे बाबे का बन जाओ तो फायदा मैडम जी।
0: जी उही गल है कि जे अगला सामनों कुछ कह रहा है तो जे थानू लगता है भी थोड़ा कोई नुकसान नहीं हो रहा तो तुसी चुप करके सुन लो। ये तो
1: जिस
0: वधिया
1: तरह
0: कि
1: अपने हक,
0: तुसी भी नाल बोलोगे लड़ाई
1: ये
0: होर वध
1: अपना
0: जाती
1: हक,
0: है जी।
1: ये अपना हक है मैडम जी, फिर तो गुस्सा करो भी बिना
0: जी
1: मतलब दे, बिना गुस्सा करो जी। इस तरह सच दे कच मैडम जी एक लग झूद अगले दे,
0: जी जी बिल्कुल
1: कच भी जदी पता लगना पैर चुके, जदी पता लग जाए ये लग गया पैर च, गुस्सा भी सच्ची गल झूठ जी। इस तरह मैडम जी,
0: जी जी वो एवें
1: इस तरह
0: हुंदा जिवें
1: नहीं
0: कहंदे कि ने कि जे तुसी किसे नूं देख रहे हो, जे ओहदे मुख ते देखो जी, जे मुस्कुरा रहे स्माइल है ओहदे फेस ते, फिर वैसे भी अपना दिल खुश हो
1: जी।
0: जांदा वी चलो ठीक है। इसे तरह जे दूजा बंदा गुस्सा कर रहा है तुसी हस के ओह गल नूं टाल दो
1: हाँ जी, हाँ
0: तां
1: जी,
0: जे
1: इस तरह
0: लड़ाई ना
1: नहीं
0: वधे जी।
1: निक्की जी गल दा पहाड़ नहीं बनाई दा, जिंदगी जाए कुछ करके दिखाई दा, छोटियां मोटियां गल्लां पिछे मैडम जी एवे नहीं घबराई दा।
0: जी जी बिल्कुल वही है
1: इस तरह
0: कि असी।
1: जी
0: हाँ जी
1: बच्चियां जी लाला दा चेते आए बाला दा खेड विच हारे दा बैठ जी गुस्सा नहीं करी दा।
0: जी गुस्सा नहीं करीदा वही है, गुस्सा करांगे एदे च असी साडा अपना ही नुकसान है ते दूजे दा भी नुकसान ही होना,
1: जिस
0: लड़ाई
1: तरह
0: वध
1: मैडम
0: जांदी
1: जी
0: है
1: लाकड़ी नु घूणा खा जांदा ना बंदे नु, इस तरह गुस्से च मैडम जी खत्म हो जांदा जी।
0: जी। वही गल है कि रिश्ते आपां एवें खराब ना करिए,
1: जी
0: ते
1: जी
0: जे दूजा बंदा गुस्सा करे चुप करके थोड़ी देर सुन लो जे तुहाडा एदे च कोई नुकसान नहीं हो रहा
1: अपना कोई
0: जी।
1: मैडम जी हक है, हक पिछे गुस्सा कर दे बिना मतलब दे ना, झूठी गल दा ना बनाओ
0: जी जी बिल्कुल ठीक है जी,
1: जी,
0: कॉल करने लिए
1: सच्ची
0: बहुत
1: गल
0: बहुत
1: पिछे।
0: शुक्रिया।
1: थैंक
0: सत श्री अकाल जी।
1: यू मैडम, थैंक यू जी।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: सत श्री अकाल जी।
1: सत्याकाल मैम
0: जी नाम दस दो अपना।
1: जी, मेरा नाम हरमनजोत कौर है जी।
0: जी ते भी दस दो, कितों गल कर रहे हो
1: मैं राजपुरा टाउन तो गल कर रही हूँ जी।
0: जी? ते अज खुलियां गल्लां ने, फिर किस विषय ते गल करोगे अज?
1: मैं कुड़ियों के बारे गल करना चाहूंगी भी कुड़ियों हम खुली आजादी दे देनी चाहिए है
0: जी
1: भी। हजे भी किसी किसी थां ते हैगा भी कुड़िया ने ये नहीं करना वो नहीं करना भी ऐदा नहीं होना चाहिए। मतलब कि घर देखना चाहिए भी कुड़िया हूं किन्नी अगे वध गईया ने।
0: जी वो तो है ही है कि कुड़ियां हर खेत्र के विच जिहड़ा मुंडे का मुकाबला कर रही हैं ने।
1: हाँ जी भी
0: जी
1: रोकना टोकना नहीं चाहिए। हाँ चलो भी बंदे नूं हुंदा भी कुड़ियां सेफ रहन, क्योंकि अजकल कुड़ियां सेफ नहीं है, निक्के निक्के बच्चे भी सेफ नहीं है। पर
0: जी
1: कुड़ियां नूं अपनी हिम्मत से कुछ करन दोगे तां ही कुड़ियां अगे वधणगियां। जे ओही तुसीं रोक टोक करी जाओगे तो तां फिर माड़ी गल है। अज दे टाइम च भी 2026 चल रहा है।
0: पर इत्थे ये भी नाल गल है कि इन्हां नूं कुड़ियां नूं पहलां ये भी सिखाया जावे नाल नाल कि किस तरह असी समाज दे विच विचरना है ना। ते ये भी
1: हाँ
0: नाल
1: जी
0: गल है कि कुड़ियां जिहड़ियां ने मुंडिया दा हर खेत्र च बराबर मुकाबला कर रही हैं ने।
1: हाँ जी मैम बिल्कुल बराबर मुकाबला कर रही है। एरोप्लेन ट्रेन जिथे मर्जी
0: जी
1: देख
0: जी
1: लो
0: बिल्कुल
1: कुड़ियां सब तो अगे ने अज दे टाइम
0: जी
1: च।
0: जी
1: खेलना च भी अज तक वेखो किन्ने किन्ने फर्स्ट आंदियां ने कुड़ियां, खेलना च पढ़ाई च फर्स्ट आंदियां ने। हाँ
0: जी जी बिल्कुल, मैरिट सूची दे विच ज्यादातर कुड़ियां दा ही नाम आउंदा जी। ये भी सच
1: हाँ
0: है
1: जी
0: जी।
1: हाँ जी हाँ
0: जी
1: जी
0: जी ठीक है जी, कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: सत श्री अकाल जी।

0: हेलो,
1: मैम नमस्कार।
0: सत श्री अकाल जी। समा
1: मैं
0: अपने
1: कुलदीप
0: कोल
1: शर्मा
0: थोड़ा
1: जी, अमेरिका
0: जल्दी
1: से
0: जल्दी अपना
1: हूँ।
0: नाम दस
1: कुलदीप
0: दो जी।
1: शर्मा, पिंड बनारसी, जिला संगरूर।
0: जी, ते की गल करूंगी
1: विषय जी, रेडियो दा बदलदा रूप
0: जी।
1: बदलिया जा अज तक।
0: हाँ जी,
1: पहला रेडियो ट्यूबां वाले हुंदे सी, उस तों बाद अपने ट्रांजिस्टर वाले रेडियो हो गए,
0: जी
1: उस तों बाद आ गए जी आईसी वाले, फिर
0: जी
1: आ
0: वही है
1: गए
0: कि समय दे
1: डीएसपी।
0: नाल जेड़ा है रेडियो भी बदलता जा
1: हाँ
0: रहा है
1: जी,
0: कि नहीं। जी
1: डिजिटल प्रोसेसिंग अजकल आ गई नवी टेक्नोलॉजी, DRM। सो
0: जी
1: रेडियो नु सच्चा साथी बनाओ। रेडियो ने सब तो ज्यादा समय दे हालातां दे अनुसार बदला कीता है, जिस
0: जी
1: तरह मनुख ने अपने सुभाव दे विच बदला कीता है।
0: जी जी
1: ते
0: बिल्कुल
1: रेडियो नु टेक्नोलॉजी दे बदलन नाल मतलब नकारना नहीं, मेरी यही बेनती है, रेडियो नु अपनाओ। एदे नाल स्क्रीन टाइम घटूगा, स्क्रीन टाइम नाल अपने अखां दा ते साइकोलॉजी
0: जी
1: दा,
0: जी नाल नाल
1: दिमागी
0: ज्ञान भी
1: तौर ते
0: मिलता रहता
1: बहुत
0: है, जिवें
1: लोस
0: न्यूज़
1: हुंदा
0: भी
1: जी।
0: दसते रहने असीं जी।
1: हाँ जी,
0: ठीक है जी,
1: ते
0: कॉल
1: जी
0: करने लिए
1: बहुत
0: बहुत
1: ही
0: बहुत
1: वधिया साधन
0: शुक्रिया।
1: है जी मनोरंजन दा, इहनूं सच्चा
0: ठीक
1: साथी दे तौर ते अपना के रखो।
0: जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया।
1: थैंक यू जी।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत का। तो मनचाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओ, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़्मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं?

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी और अभिजीत गवाणकर राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाणकर की ये फरमाइश थी। मंचाई गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आढ़िया, सौभाग्यवती भारती आढ़िया, पारस पायल, श्वेता आढ़िया और उर्वी बेन आढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओ, लेकिन अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहां से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती, ये फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और जिला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने। और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतजार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती। नाट्य तरंग,
1: आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला,
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूं?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे

0: पूछे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
1: जी,
2: अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा। अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप?
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
1: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
1: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
1: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है।
0: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
1: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनसुईया, देख तो वो मृगछाना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
1: हाँ चलो, इसे इसकी माँ के पास पहुँचा आए।
3: अरे अरे, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
1: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
3: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुईया।
0: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक यहाँ उपस्थित है
1: जी।
0: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा छलूं या?
1: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
0: पाप?
1: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
0: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
1: अब जाने भी दीजिए मुझे।
0: क्यों जाने दूं तुम्हें?
1: पूर्ववंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
0: शील और संकोच की दीवार हमारे बीच और कब तक रहेगी शकुंतला?
1: मैं आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूं आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
0: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
1: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
0: क्या उलझन है तुम्हारी, बताओ तो।
1: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो।
0: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
1: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
0: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
1: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। किंतु आप मेरा हाथ तो छोड़ो।
0: नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा।
1: तो फिर कब?
0: मुझ प्यासे भंवरे को तुम्हारे आधर पुष्प का रस मिल जाए तब।
1: ये क्या कर रहे हैं आप?
4: अरे चकली, आप अपने प्रिय से विदा ले, रात आ पहुंची है।
1: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रहे हैं। आर्या, आप इस वृक्ष के ओट में छिप जाइए।
0: ठीक है।
4: शकुंतला, अब कैसी हो बेटी? शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
1: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताप भी कुछ कम हो गया है।
4: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
1: अच्छा
4: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।

0: हाँ चलो माँ, चलना ही होगा। अब पछताने से रोने कलपने से क्या होता है। मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाली लता कुंज, विहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी और तब तुम अतृप्त नहीं रहोगे।
1: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी चूम नहीं सका। अब उस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है। उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर भरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
2: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए। यहां वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर मंडराने लगे हैं। तपोवन की पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
3: इन राक्षसों ने फिर से उठा लिया, मैं अभी जाता हूं।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं।
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कर्ण को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और सहयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया, पिता कर्ण भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?
0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है।
0: है तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: अरे ओ दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली संसद, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसी तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा।
1: ये क्या अनर्थ हो गया, लगता है अपने बेसुधपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटा लो, तब तक मैं अर्घ्य का जल लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जा। ओह भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
1: अनसुया
0: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं।
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
0: चलो इतना ही पर्याप्त है। उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर ले।
0: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए, बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: अरे ये तो दिन निकल आया, कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ये अनुसुया उठना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
2: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली, और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
2: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
2: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू भी तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
2: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
2: सच?
1: हाँ।
2: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ। पिता कण्व वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।
2: आशीर्वाद दे रहे थे?
1: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
2: हे भगवान।
1: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
2: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कण्व को इस घटना का पता कैसे चला?
1: आकाशवाणी से।
2: आकाशवाणी से?
1: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे आकाशवाणी हुई।
3: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
2: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली, तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
1: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
2: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
1: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
4: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
1: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
2: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देखता अनुसुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है?
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
3: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
2: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
2: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
3: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
3: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
2: माँ,
3: माँ, प्रियंपदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्म इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवान।
0: आओ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी, आभूषणों का आकर्षण और श्रृंगार की इच्छा होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण जिसने कभी तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ तक नहीं लगाया, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। उसे विदा दो वन देवताओं, उसे विदा दो।

शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो, धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष हो, इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता हो, और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।

0: जाते हैं।
1: तपोवन से बिछुड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो और उन्हें नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही है। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
0: बाबा बाबा बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं बाबा।
2: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
0: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो आम के वृक्ष के अनुराग ने अपनी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या अनुसुईया, मेरी सखी तुम इसका ध्यान रखना।
2: बेटी तुम निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप पर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
0: अरे ये मेरा आंचल कौन खींच रहा है?
3: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
0: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे। जा, लौट जा।
4: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
2: हाँ शालग्राम, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
5: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
2: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
0: बाबा
2: पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। हाँ दास दासियों से भी स्वजनों का सद्व्यवहार रखना
0: बाबा,
2: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
0: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा। प्रिय बताओ आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो।
3: सखी
0: तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे?
2: हाँ बेटी।

0: अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहां रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
1: अनुसुईया,
2: शकुंतला,
1: तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी, बोलो।
0: इतनी अधीर रहो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
1: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना।
2: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी?
1: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
2: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
1: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
3: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
0: हाँ शरणक्रम, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए। जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहां के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग

0: कन्या सचमुच प्रायतन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। किसी की धरोहर को सकुशल लौटा देने में कितना संतोष है।
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993 फिल्म साहिबा।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में उस जमाने में, तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे जो लिफ्ट से नहीं आए सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
0: जी जी जी,
1: हाथ वाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है क्योंकि जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म, एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
0: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
0: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
1: बसेरा का भी इसी तरह सा भाई, देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई
0: हाँ
1: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
0: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था,
0: हाँ मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, तीन चार फिल्मों में सिलसिला था ना मैं,
1: जी जी
0: सारी फिल्म में त्रिशूल में भी था, उसमें था, और उस सब हर सिटिंग में स्टोरी सिटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ कोई ऐसा। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर किए, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर, तो दो भी हो आप डायरेक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट हैं, दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, जीटी में जाएंगी वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की कुछ बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटो एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी, तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम मैं करूँगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन वलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी। हाँ। जी जी
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया, फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है, तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था,

0: ये स्टोरी आइडिया है, दोनों में सुना। उन्होंने कहा ये आर्ट फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा
0: हाँ, जब ओरिजिनल तो जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें। तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर, मतलब कमर्शियल पिक्चर, बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं, कुछ और डालते हैं। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: ये करे। तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में, उनकी जो उनका ही करना है ये सब। तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए। तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी,
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है, और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा, बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी हैं, उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा वो कह रहे हैं, बोला यार ये तो है, देख ले तू। तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से, शुरू में जो सोच रहे थे। और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा, जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला, मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मैंने राखी जी ने ऐसे ही पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ,
1: फिर सुनाया।
0: फिर उन्होंने कहा तुम बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे होते ना,
1: हाँ,
0: इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा को छोटा है, फलां क्यों नहीं, मेकअप रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं की
1: जी जी जी,
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ही करूँगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी हैं,
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे वाह।
0: और असिस्टेंट के लिए कौन करेगा भाई?
1: हाँ,
0: मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर था ना,
1: बहुत बड़ी बात,
0: नया बन रहा था,
1: पहली फिल्म थी आपकी,
0: पहली फिल्म, और वो कर रही है और हेल्प कर रही है इस ढंग से, वो तो उस वक्त तक, आज भी और उस वक्त भी, जिसको नहीं करना वो जाओ भाई दूसरे के पास, हम नहीं करेंगे
1: जी।
0: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर, जो होना था 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से,
1: हाँ हाँ,
0: तो उन्होंने यश जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे, और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे, वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर

जी जैसा आपको लगे उतार दी गई पिक्चर, उनकी चैन अगली पिक्चर जो थी मेरे खड़े शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो गुलशन राय जी रिलीज कर रहे थे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाए।
1: क्या बात है, क्या अच्छा कर रहे। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का वो था, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यशजी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यशजी के साथ था। तो जब हम दांत के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिकर बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा।
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे, ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली,
1: वो जूली भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप
0: मिली।

0: आपको अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसी चीज कहा ये जी, तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा सारा मुश्किल होता है तुझे, बट एनी वे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तो मैं उससे मिलने गया, बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे, बोला करूँगा। और उसने पिक्चर ले ली, उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छी गाने चले
0: बहुत। नहीं फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा,
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूंगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था, वो कुछ हुआ था ऐसा।
1: हाँ,
0: मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे

0: कि जावेद साहब गाने लिखेंगे। उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है। मजरू साहब ने इसलिए दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब।
1: बिल्कुल, उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर।
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है
0: भाई? इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी।

0: रमेश जी, अब बसेरा की बात कीजिए।
1: बसेरा में भाई ऐसा हुआ कि दूसरा आदमी इंडस्ट्री को बहुत पसंद आई, मुझे काम मिलना शुरू हो गया था
0: जी,
1: लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर कहना शुरू कर दिया था हमारे लिए करो। तो जियोम जी ने भी कहा, ऐसे दो चार बड़े प्रोड्यूसर ने कह दिया था क्या हो मेरे साथ करो पिक्चर, एक ऐसे बड़े प्रोड्यूसर जो हुआ ये कि रमेश बहल के साथ मेरा उतरा आना जाना था, उसका बांद्रा में ऑफिस था, मैं पाली हिल से उसके यहाँ कई बार चला जाता था, अगर साइन में रहता था तो भी आते जाते यश जी के यहाँ जाना है अगर पाली हिल तो वहाँ पे उसके पास रहता था, बैठते चाय वाय पीते गपशप मारते, भला आदमी बहुत अच्छा आदमी था। उसे कहा शॉर्ट, वो भी शॉर्ट ही बोलता था शॉर्टी क्योंकि अमिताभ जी शॉर्ट बोलते थे शॉर्टी कर मेरे लिए पिक्चर, रोज मूवीज के लिए तेरे एक पिक्चर,
0: हाँ
1: मेरी ये कंप्लीट हो तू शुरू कर दे पिक्चर। मैंने कहा तेरा साला तेरी पिक्चर कर रहा है अभी अभी,
0: हाँ।
1: वो करे तू भी कर एक पिक्चर, दो बनाऊंगा मैं, तुम दोनों की बनाऊंगा तब मेरी अपनी नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है आइडिया, वो कोई कहानी है कोई कोई राइटर उसके पास आए मेरे पास भेज दे, मैं ओके नहीं करता था। ऐसा चलता रहा, बोला सारी दुनिया को कहानी मिलती है कि रमेश तलवार को नहीं ऐसा होता था। फिर एक आदमी ने जो इनके राज खोसला जी के राइटर थे, उन्होंने कहानी सुनाई ये वाली बचेरा की, उन्होंने कहा भाई मैंने एक ड्रामा देखा है
0: मराठी
1: मराठी में,
0: वो हमेशा ऐसे ही करते थे राज खोसला के,
1: वो मैंने देखा है और उसका आइडिया ये है
0: जी,
1: वो आइडिया मुझे पसंद आ गया तो उनके साथ बैठ के मैं कुछ लाइन वाइन बनाना शुरू हो गया। तो हम लोग यंगस्टर थे ना, हमने आदतें फटाफट करते थे
0: जी,
1: और ये लोग ट्रेडिशनल जो एक आध सीन करके बैठते थे एंजॉय करते थे लाइफ को, वो छः महीने का पैटर्न, और मुझे था कि बस एक महीने के बाद पिक्चर शुरू होनी चाहिए,
0: यस
1: ये था। रमेश बाल ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ एक महीने बाद आऊँगा तेरी पिक्चर शुरू होनी चाहिए, ऐसा कुछ हो गया था। सो उनके घर ही शूटिंग कर रहे थे, और फिर वो राइटर साहब ने कहा भाई मैं आप किसी दूसरे को ले लो स्क्रीन प्ले के लिए, तो हमने थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। जब बन गया तो मैंने कहा सागर साहब उधर बिजी हैं ये हैं, तो मैंने गुलजार साहब का सोचा
0: बाबा
1: कि उनके पास जाऊं तो कैसा रहेगा,
0: पुरानी दोस्ती है ही,
1: वो पापा बुलाता हूँ मैं अभी भी गुलजार पापा
0: जी,
1: सागर को सागर पापा बुलाता था, गुलजार पापा मिलने आऊं, आजा बेटा एक आइडिया सुनिए, तो आप इसके गाने लिख दीजिए, अलग किस्म के गाने हो जाएंगे आपका और आर डी बर्मन का, वो भी है समथिंग समथिंग, रमेश बैल प्रोड्यूसर है, और डायलॉग भी लिख दीजिए आप।
0: बाबा
1: तो मैंने थ्रेड बनाया हुआ है, उनका बेटा मैं वो अजीब सा लग रहा डायलॉग एंड मोरिंग करना, तो मैं स्क्रीन प्ले डायलॉग एंड सॉन्ग ऐसा। तो मैंने कहा मैं अपना सुना सकता हूँ आपको, जो मैंने हल्का डायरेक्टर का दिमाग सुना सकता हूँ कि नहीं आपको लगे कि यार आपको कुछ बंदिश में रोक रहा हूँ, उन्होंने नहीं सुना, तो मैंने अपना आइडिया सुना दिया। तो उनका नहीं तो मेरा मद्रास की तरफ ज्यादा था, मद्रासी फिल्म की तरह ज्यादा, इतनी फिल्में देखी हुई, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा इसका स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, मैं करता हूँ, और जो मेरी लाइन थी उसको ऊपर नीचे करके दो चार नए अच्छे सीन डाल के, बहुत अच्छे वाले जो सीन बीच में डाले उन्होंने, वो गाने लिखे और हो गया। अब जब स्क्रिप्ट बन गई तो अब दो लड़कियां हैं,
0: हाँ ये कौन आए,
1: अब मैं गया राखी जी के पास, राखी जी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपको जो रोल पसंद आए, अगर बड़ी बहन का रोल पसंद आता है तो आप वो करिए, छोटी बहन हम किसी और को ले लेंगे, अगर आपको छोटी बहन का पसंद आता है, मैंने तो आपको छोटी समझ के लिया है कि छोटी बहन आप है रेखा वाली रोल, और नूतन है बड़ी बहन,
0: ओके
1: नूतन के साथ मैंने कभी काम नहीं किया लेकिन उनकी फिल्मों का मैं फैन था, उनका उनकी फिल्में देख देख के मेरे बहुत तबीयत खुश होती थी। तो उन्होंने कहा सब्जेक्ट सुना, उन्होंने कहा रमेश मैं बड़ी बहन का रोल करूंगी, छोटी बहन के लिए तुम रेखा को लो,
0: उन्होंने ही बोला,
1: हाँ बोला। मैंने कहा मेरा रेखा का कोई लेना देना नहीं है, कुछ काम नहीं किया कभी और मूडी किस्म की है मेरे को, बोले मैं अभी फोन करती हूँ, उन्होंने फोन लगाया। रेखा ने कहा मैं यहाँ जू पार्लर स्कीम में फलाने बंगले में शूटिंग कर रही हूँ,
0: हाँ
1: तो रमेश को मेरे पास भेज दो। तो मुझे एक आध बार पहले उत्तर मिली है, एक आध यश चोपड़ा का असिस्टेंट की तरह एक आध जोक भी मारा था उन्होंने मेरे पर, एल्बम वेल्बम देख रहे पुरानी किसी के देख रही थी और कुछ हमारी फिल्मों की एल्बम देख रही थी, कुछ एक आध जोक मारा था मेरे ऊपर समथिंग लाइक। तो मैं गया, मैंने कहा ऐसा सुना लो लंच खाना खाओगे, मैंने कहा नहीं खा के आया हूँ। अच्छा दो मिनट में मैं खा, उन्होंने फटाफट खाना खा, आ जाओ सुनाओ। अब मैंने सुनाना शुरू किया, इंटरवल हुआ, जाओ मैं ये पिक्चर करूंगी, मैंने कहानी

0: की सुन तो लो, मैंने कह दिया ना ये पिक्चर करूंगी,
1: डन हो गया।
0: इंटरवल तक सुन के ओके कर दिया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: मैंने आके रमेश बैल को खबर दे दी, प्रोजेक्ट उसका बड़ा अच्छा बन गया। रेखा चली हुई हीरोइन थी, राखी चली हुई हीरोइन थी, हैं। अब साहब प्रॉब्लम आ गई, हीरो कौन रोल करेगा। शशि कपूर जी के टाइम पे दूसरा आदमी में लोग डबल रोल रखा करते थे कि हीरोइन को पहला ऋषि कपूर याद आता है और ऋषि कपूर, लेकिन राखी हीरोइन थी पहला ऋषि कपूर के साथ नहीं। तो मैंने एक लिस्टेड वीकली में फोटो देखा था, ऋषि कपूर के गले में स्कार्फ है या शशि कपूर के गले में स्कार्फ है, और नीचे लाइन थी हाउ मच ही लुक्स लाइक हिज अंकल शशि कपूर।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं तस्वीर ली, कटिंग काटी, शशि कपूर के पास पहुंच गया। सर एक प्रॉब्लम है, बुरा, मैं डबल रोल नहीं करना चाहता और मुझे चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर डायरेक्ट करने का। मेरे असिस्टेंट तुम उनकी बहुत सारी पिक्चर उनके सामने, उन्होंने मेरी टैलेंट देख चुके थे। बोला बेटा मैं गेस्ट रोल नहीं करता, मैंने कभी गेस्ट रोल नहीं किया। मैंने कहा आप मेरी सब्जेक्ट सुन लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके बिना पिक्चर नहीं बन सकती तो आप करिएगा, अगर आपका आप सजेशन दीजिए मैं क्या करूँ। अच्छा तो घर आ जाओ हार्कनेस रोड पे, नाश्ता साथ में करेंगे। मैं साहब हार्कनेस रोड पहुँच गया सुबह उनके फ्लैट पे, उनके साथ नाश्ता किया। बोला बैठ जा गाड़ी में, मुझे नटराज शुरू ही जाना है, बहुत दूर है, आराम से कहानी सुनाओ, जल्दबाजी नहीं करना, पूरी सुनाना फिर मेरा रोल नहीं, क्योंकि एक बार हमने उनको खाली उनका रोल सुनाया था कभी कभी में। चलाकी की थी, अच्छे अच्छे सीन सुना दिए थे तो उन्होंने हाँ कर दी थी। रोल छोटा था, 420 की। मैंने कहा ना हम लोग भेजा करते थे लोगों को।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने पूरी कहानी सुनी, नटराज स्टूडियो गेट तक कहानी एंड हो गया था, दी एंड।
1: हाँ।
0: गेट पे गाड़ी रुकी, उतर जा, मैं तेरी पिक्चर कर रहा हूँ लेकिन एक शर्त पे, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, कहीं फोटो नहीं, सरप्राइज आऊंगा, किसी को नहीं पता होना चाहिए कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ।
1: अरे बाप रे,
0: किसी पब्लिसिटी में मेरा नाम नहीं आएगा, जब मैं स्क्रीन पे आऊं लोग कहे शशि कपूर, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो उल्टा अच्छा आइडिया है।
1: हाँ।
0: ये तो कमाल की बात थी बोली आपने, डन। वो अंदर चले गए, मैं बाहर खुशी खुशी सीधा यश चोपड़ा के पास पहुंचा
1: जी।
0: और ये बात बता दी।
1: तो आप यश चोपड़ा के पास पहुंचे?
0: मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया, मिल गया।
1: ये दूसरे आदमी की बात हो रही है?
0: जी
1: जी,
0: दूसरा आदमी में ये, मैं वापस गया ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब मैं जब इनके पास गया तो इन्होंने फिर कहा, मैंने कहा आपका रोल तीसरा है, दोनों हीरोइनों से आपका रोल छोटा है।
1: हाँ।
0: लेकिन मुझे आप चाहिए।
1: गजब।
0: मैं आप कहता हूँ इसमें बहुत क्रेडिट मिलेगा आपको, आपने मेरा गेस्ट रोल किया था तब से मैं, अच्छा कोई और हीरो नहीं है उनके
1: हाँ।
0: सामने?
1: हाँ।
0: मैंने कहा नहीं कोई नहीं है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो आ जाओ घर पे, आ जाओ सुबह। हाँ। नाश्ता करेंगे
1: वापस वैसे
0: और फिर कर। अब उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा रोल अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा रोल तीसरा है। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, ये ना कर देंगे। करूंगा तेरी। ये आउटडोर में कहीं बैठे हुए थे, अपना जो हमारा पोई लेक पे जो आउटडोर स्टूडियो था तो वहां पे थे, और मुझे उन्होंने कहा वहां पहुंचे हम, तो उन्होंने कहा तेरी फिल्म करूंगा मैं।
1: बसेरा के लिए हाँ हो गया?
0: हाँ हो गई। और मतलब यह है कि डेटे तुमको ऐसे चाहिए तो तुमको वेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी से नहीं कर, मैं ये कर रहा हूँ राज्य की पिक्चर लिया वो चल रहा है सब, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा डेटे, जनवरी में करूँ, दिसंबर जनवरी में। तो ये कुछ अप्रैल मई जून था, ऐसा कुछ था। मैं रमेश बैल को बताया कैसा है, बोलो ठीक है रॉडी, वैसे भी तू ये सेट लगाना चाहता है, मेन सेट तो तुम्हारा घर है, बंगला है ना, उसका सेट लगाएंगे अपन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा दोनों। तुम पहले आउटडोर शुरू कर दो 15 दिन पहले, राखी के साथ, रेखा के साथ, बाहर वाले सड़कों के सीन शुरू कर दे, और फिर सब ये हो गया। ऐसे मतलब क्या, कब दो और दो चार चीजें बनती हैं, कैसे फिल्म बन जाती है।

0: कमाल है। लेकिन शशि कपूर और ऋषि कपूर मल्टीपल टाइम्स आपकी फिल्मों में आते हैं
1: जी,
0: उनके साथ नाते जो हैं?
1: नहीं, बहुत अच्छे रहे थे मेरे, मतलब भाई देखिए शशि कपूर का थिएटर से ताल्लुक, खुद थिएटर वाले। आप ये देखिए कि इतने हम लोग उस तरह क्लोज थे, मुझे क्रिटिसाइज भी करने को खुले करते थे कुछ बात। मैं दाढ़ी अचानक सीन सुना रहा हूँ, शेव नहीं की हुई थी मैंने, और ऐसे किसी बंगले में शूटिंग कर रहे, नीचे बैठे हैं, दीवार की शूटिंग थी। इन्होंने उसके लिए अपना पुलिस वाले का रोल करने के लिए हेयर कट करवाया स्पेशल, डेट इस तरह दी कि वो टाइम पे मैं बाल कटवा लूँगा, मैं पुलिस ऑफिसर लगूँगा। बैठे हुए हैं, सीन सुना रहा हूँ, अचानक मेरी तरफ देखा, शेव क्यों नहीं की? मैंने कहा सर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन शेव करता हूँ, वो आज मंगलवार है ना, मंगलवार तो करता ही नहीं हूँ ना। हीरोइनों को देखो तीन तीन घंटे मेकअप के लिए बैठती है। सेट पे आओ, शेव करके आओ। नेक्स्ट डे से मैंने रोज शेव करनी शुरू कर दी।
0: वाह वाह।
1: चाहे ट्यूसडे है चाहे सैटरडे है, या वो गरीब लोग सोचते हैं कैसे बचेगा एक ब्लेड। ट्यूसडे नहीं करूंगा, सैटरडे नहीं करूंगा, भगवान के नाम पे होगा ना, देखो तुम्हारे लिए नहीं किया। गरीबों की है थिंकिंग जो है, गरीबी की है।
0: जी जी जी जी।
1: अलबत्ता तब से मैं आज तक रोज शेव करता
0: हूँ।
1: और शशि कपूर दो बार शेव करते थे, एक बार 7 बजे की शिफ्ट में आते थे करते थे, वहां आते ही स्टूडियो में करते थे, फिर 2 बजे शिफ्ट जहाँ पे जाते थे वहां पहले शेव करते थे।
0: अच्छा, क्लीन लुक के लिए
1: एकदम।
0: वाह वाह वाह।
1: तो वो फिर मुझे मालूम था कि ऐसा करते हैं।
0: और ऋषि कपूर की यादें?
1: और ऋषि कपूर तो मेरा यार ऐसा लंगोटिया था, उसने शुरू में ही जैसे असिस्टेंट करनी शुरू की,
0: हाँ,
1: वो पिक्चर जब कहानी सुनी उसने यश चोपड़ा जी की पहली बार,
0: हाँ,
1: मेरे तो मैं मिलने जाता था उसको, और वो तो कहता यार रोल छोटा है मुझे, वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने मैं क्या लगूंगा। तो करते करते मैं कन्विंस करता था, फिर देखो मैं 3-4 दिन काम करके देखूंगा
0: जी,
1: अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं करूंगा
0: जी।
1: मैंने कहा ये शर्त भी मंजूर है। और वो आया आउटडोर में और उसने वहाँ शूटिंग की कश्मीर में 3-4 दिन, और यहाँ आया तो रोज मूवी में सारे दोस्त जो बैठते हैं यहाँ, ये भी आकर रोज मूवी बैठता था, डब्बू साहब भी आते थे वहाँ पे, अपना गुलशन बावरा, रमेश बैल, सब ये सब, और बातचीत बातचीत करने में कुछ बोलते, बोले यार बड़ा अच्छा काम हुआ। तो डब्बू ने बोला क्या, तो 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए और 12 सीन करके आ गया, अच्छा क्या किया? घबरा गया, कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे कहने लगा रमेश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा मेरा चाहे तो मैं तेरे फिल्म दिखा सकता, ऐसे नहीं ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन वो भरोसा कर मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को बहुत क्रेडिट मिलेगा। और इस तरह दोस्ती हमारी बढ़ती रही, फिर आउटडोर बहुत सीन वीन सब मैं रीडिंग करवाता था, सब करवाता था। और एंड तक उसने जब यश जी ने कहा कि पिक्चर करो, तो मैंने कहा यश जी ने ऑफर दे दी है, तो उसने कहा मैं करूँगा तेरी पिक्चर,
0: बाबा
1: वही बोल दिया था। और वो दोस्ती जो थी, फिर मैं पालील पे आया तो साथ वाले बंगले में था, जब दिल आए मैं उसके घर चला जाता था, शाम को अकेला बैठा है, वही क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं, बियर पिएगा? वहाँ पे भी आउटडोर में बर्फों में काम कर रहा था दूसरा आदमी का, और वहाँ बार थी ओबराय होटल में, बड़ी अच्छी बार थी, बाहर बर्फ गिरी हुई है, और मैं ठंडी करके आया, ठंडी में काम रहा हूँ, साले ये मर जाएगा, कल सुबह शूटिंग नहीं कर सकेगा। कोने एक्टिंग, नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता, अरे ये शराब नहीं होती। फिर यश जी ने अपनी किसी फिल्म में ये सीन में डाला हुआ है।
0: अच्छा,
1: यश जी को मैंने सुनाया था कोनेक शराब नहीं होती, तो बोले उसने मुझे कोनेक गर्म पानी के साथ पहली बार पिलाई थी। फिर ऐसा करते करते कभी एक बार होली का दिन था, एक बियर का गिलास दे दिया था उसने, फिर मैं रेगुलर बियर पीना शुरू हुआ, मतलब हफ्ते में 5 दिन पीता हूँ। तो वो बुला लेता था बियर पीनी है, तो मैं गरम बियर पीता हूँ।
0: अच्छा।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने सुना चौथा भाग, संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले।

0: मेडिटेशन करिए, रोज सवेरे सैर ते जाइए, ये
1: बिल्कुल,
0: चीज़ां नाल साडा बीपी
1: कुदरत नाल
0: कंट्रोल
1: जुड़े
0: रहेगा।
1: रहिए
0: जी बिल्कुल
1: जी।
0: जी। ते हुण आपां ना इक गलबात कर लेने एक वैटनरी ऑफिसर दे नाल,
1: जी
0: जेड़े कि दसदे ने कि किस तरह असीं जिहड़ा है प्यार अते जिहड़ा जिहड़ी है दया दी भावना है ओह जानवरां प्रति किवें लैके आउणी है ते क्यों जरूरी है अजकल दी जिंदगी दे विच। ते आओ करदे उहनां नाल गलबात जिन्हां दा नाम है डॉक्टर अभिलाष। सारे सुनने वाले प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असीं करांगे एक गौरमेंट दे अंडर काम करे वैटनरी ऑफिसर दे नाल जिन्हां दा नाम है डॉक्टर अभिलाष, जो कि सानूं दस्सणगे कि असीं दुनिया नूं मतलब किवें असीं देख जिहड़े जानवरां प्रति जिहड़ा हिंसा वध रही है उहनां नूं दया नाल भावना नाल किवें देखणा है। सत श्री अकाल जी।
2: सत श्री अकाल जी। हाँ जी, मैं डॉक्टर अभिलाष एज़ मैं पटियाला च पोस्टिड हाँ
0: जी
2: एज़ वैटनरी ऑफिसर। तो इतने असी सारा एनिमल्स वगैरह नाल
0: जी
2: प्रॉपर डील करते हैं
0: जी
2: जिहड़े भी केसेस वगैरह ने किसी भी रिलेटेड।
0: ते इस दे रिगार्डिंग की फिर पहला सवाल मेरा यही है कि आपा देख रहे हैं कि आजकल जेहड़े लोगों के दया भावना जेहड़ी है जानवरों लेके खत्म हो गई है, तो जानवरों नाल जेहड़ा है दया ते प्यार क्यों जरूरी है?
2: देखो अपना शुरू तो ही ह्यूमन ते एनिमल दी जिवें अपना इंडियन कल्चर च भी देखी है
0: जी
2: इंटरैक्शन रही ही रही है ह्यूमन दी एनिमल्स ने नाल।
0: जी
2: ते उस करके अपना ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता भी अपने विच इन्हां प्रति दया भावना वगैरह रवे।
0: जी बिल्कुल
2: ये जिवें आप इन्हां नाल ट्रीट करते हैं एनिमल्स वगैरह नाल उवें ही आप सोशली भी ह्यूमनस वगैरह नाल भी ट्रीट करांगे। इस तो सीधा सीधा आपां नूं दिखदा है जे जिवें आप उन्हां नूं प्यार करते हैं उवें ही आप सोसाइटी च भी विचरांगे,
0: जी बिल्कुल
2: तां करके जरूरी है। इहदे नाल बाकी कुछ जिवें सोशल एंगजाइटी वगैरह टेंशन वगैरह ने उहदे नाल आपां इंटरैक्ट वगैरह करते हैंगे, इन्हां नाल रहिंदे हां तां आपां नूं उहदे नाल भी विचरन दा मौका मिलदा हैगा।
0: जी
2: ते
0: जी जिवें मैं कह
2: हांजी
0: रही कि जिवें जानवरों नाल दया ते प्यार इस लई भी मैनूं लगदा है क्योंकि आपां देखिए आम भी लोग कहिंदे ने है ना, अगर आपां कोई कुत्ते दी गल कर लईए फिर आपां कहिंदे उंज तां जी इह कुछ नहीं कहिंदा, जे तुसीं इहनूं छेड़ोगे तां ही इह कुछ कहेगा। ते इह बाकी चीज़ां च वी इह चीज़ उवें ही अपलाई हुंदी है कि जे तुसीं किसे चीज़ नूं छेड़ी जाओगे तंग करी जाओगे फिर ही उह तुहानूं कुछ कहेगी,
2: हाँ जी
0: वरना उह कुछ भी नहीं कहिंदे हैगे तुहानूं।
2: हाँ।
0: जी
2: ईवन साढ़े को भी कई बार गए सर कुछ नहीं होंदा पर
0: जी
2: ओनर घबराए होंदे नहीं एवें इन्हां ने वढ़ लिया, पर हाँ उन्होंने भी समझना चाहिए कि अगर कोई नवा ही ह्यूमन आ रहा तो उन्होंने भी इंटरैक्ट करने वास्ते थोड़ा टाइम चाहिए डॉग्स वगैरह नूं।
0: मतलब इसलिए जानवरों
2: हाँ
0: लई
2: जी,
0: प्यार ते
2: तां
0: दया बहुत जरूरी है।
2: जानवर प्रति प्यार ते इहदे नाल इक अपने विच सेंस ऑफ रिस्पोंसिबिलिटी वगैरह भी आती है कि
0: जी
2: आपां उन्हां नूं फीड करदे हां कि पानी वगैरह पिलाने या फिर
0: जी जी
2: इंटरैक्ट कर देंगे अपने विच भी आपां इस टाइम देना अपने विच रिस्पोंसिबिलिटी की भावना जागती हैगी
0: जी। वो
2: इस
0: भी है
2: चीज़
0: केयर
2: नाल।
0: प्रति भी एवं है कि आपां थोड़ा टाइम उन्हां नाल रहिए फिर आपां नूं भी फील हुंदा अगर उन्हां नूं कोई बीमारी है कुछ है
2: हाँ हाँ
0: आपां खुद ही फिर
2: आपां
0: उन्हां नूं लेके जान लग
2: इस
0: जांदे।
2: चीज़ में एक चीज़ देखी है जिवें असीं भी कम कर रहे हैंगे इस चीज़ ना इमोशनल इंटेलिजेंस क्योंकि तुसीं जिहड़ा डील कर रहे होंगे वो बोल नहीं सकते हैगे
0: जी
2: एनिमल्स वगैरह।
0: जी
2: इस चीज़ में एक चीज़ देखी है भी इहदे नाल इमोशनल इंटेलीजेंस बहुत ज़्यादा डिवेलप होंदे जो जिवें जिवें आपां जिहड़े भी एनिमल नाल इंटरैक्ट करते हैं उहदे आपां सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर देख के ही अपने च इन्नी इंटेलीजेंस जाग जाती भी आपां ह्यूमन दा नेचर भी समझण लग जाने हैं
0: जी
2: इस चीज़ नाल।
0: ते फिर इहदे लई मनुख जानवरां दी सुरक्षा लई मतलब की कर सकदे ने?
2: कई चीज़ां आ जाने जिवें गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह एनजीओज वगैरह बना रखियां ने
0: जी
2: है ना, वो मैक्सिमम स्टैबलिश होन हरेक सिटी च घट्टो घट्ट इक तां होवे ही।
0: जी जी बिल्कुल
2: ते
0: जी। जिवें तुसीं कह रहे हो एनजीओ, मैनूं इदां भी लगदा है कि आपां देखिया ही है कि कई लोग जिहड़े हुंदे ने ना उह इन्ने ज़्यादा जानवरां दे प्रति ने कि उह फोन करदे ने, जिवें तुसीं
2: हाँ
0: दस्सिया
2: जी
0: कि अज्जकल हेल्पलाइन नंबर काफ़ी चल गए ने वी जानवरां दी कि सेफ्टी लई या उहनां नूं कोई
2: हाँ
0: बीमारी
2: जी
0: है तां उह ऐसी भी गल है कि उह नाल दी नाल ही आ जांदे ने, तुसीं
2: हाँ
0: उहनां
2: जी
0: नूं
2: हाँ
0: फोन
2: जी
0: करो नाल दी नाल आ भी जांदे ने उह।
2: हाँ
0: जी तां
2: जी
0: मैनूं इह लगदा कि उहनां दी सुरक्षा लई इक भी जरूरी है, कुछ इह भी है जिवें आपां कह रहे हैं कि गर्मी इन्नी वध गई है जिन्हें सानूं पानी वगैरह दी लोड़ है उन्नी शायद उहनां नूं भी
2: हाँ
0: ज़्यादा
2: जी हाँ
0: लोड़ है
2: जी
0: अपने नालों।
2: फूड वाटर ते शेल्टर वगैरह तो आपां नूं कुछ पर्टिकुलर जिवें कि गाइडलाइंस भी पिछे आईयां ने
0: जी
2: भी एक पर्टिकुलर प्लेसेस वगैरह ते ही प्रोवाइड करना चाहिए। इहदे नाल जिहड़े कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ने ह्यूमन दे एनिमल नाल ओह भी काफ़ी ज़्यादा घटणगे ते एक
0: जी
2: पर्टिकुलर प्लेस ही इंसीडेंट जिहड़े एनिमल एक्सीडेंट वगैरह दे ने होर इह भी सब कुछ घट जूगा।
0: जी ते फिर
2: ते
0: जिवें आपां गली दे जानवर भी देखदे हां कि उहनां दे संभाल लई जिहड़ी है समाज दी की जिम्मेवारी है?
2: गली दे जानवरों लई एक तो देखो सोसाइटी लेवल ते ही कुछ ना जिहड़े वलंटियर नेगे वो आप अगे आ के काम कराना जिवें एनिमल्स वगैरह कोई बीमार है कोई एनजीओ वगैरह नूं बुलाना उन्हां नूं खुद दी इंटरेक्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा जरूरी है इस
0: जी
2: चीज़ च वो आप अगे इन्वॉल्व होन। बाकी एक पर्टिकुलर प्लेस ते जिवें एनिमल ते एनिमल दी फीडिंग ते वाटरिंग प्लेस या फिर अगे जिवें जिवें गर्मी आ रही है
0: जी
2: हाउसिंग प्लेसिस वगैरह भी कुछ एज ई शेडी हाउस प्लेसिस प्रोवाइड
0: कर
2: कीती
0: सकते
2: जान।
0: ने जी
2: बाकी जिहड़ी चीज़ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ

इविथा ने सुनिया कलियां के बादशाह कुलदीप माणक का गाया यो प्यारा जगीत। चिट्ठी अगली शामिल करा जी, बक्सर बिहार ते शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताफ अंसारी, डुमराह बिहार ते डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर ते राज एस डी अंसारी, महताब अंसारी, आफताब अंसारी, मेराज अंसारी। चकला बाजार समाणा ते जी मैं लिख रहे हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल, आरीना का सारा खुशदिल परिवार। गांधी चौंक रोपड़ ते हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जय तेग आरीना के गैल है जी मीका विरक। बहुत सोहना दरख्त बनाया, ठंडी ठंडी छां जिहड़ी इन्हां दिनां मानू सारिआं नूं चाहीदी है। बड़ा सोहना प्यारा जिहा रुख बनाया इन्हां ने महज गेट नाभा ते। सोमदत्त कैरव ज्योति राणी और गुरमन्नत मन चिट्ठी लिख रहे हैं। मसीतां डब्बाली ते दर्शन लोट, सरगुण इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर और हनी लोट। मखू फिरोजपुर ते बिला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी, आरिना के गैल है जी मनीष बजाज। लो फिर इन्हां सारिआं की फरमाइश ते सुन रहे हैं प्रोग्राम मां गुरदास मान नूं।

अगली चिट्ठी हमारे पास आई है जी गांव मुल्लियां वाली ते जिला फाजिलका विनोद काटपाल प्रवीण हनी दीक्षा जन्नत गुरलीन इन्हा के गैल है जी काका काटपाल लोगर ठाकरां ते स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरलाल सिंह अविराज सिंह गुरमान सिंह अरिना के गैल गुरनूर सिंह प्रेम सिंह जौड़ा मनजीत कौर जौड़ा करणवीर करण दुपिंदर वरिंदर सिमरन एकम दमन अर अभिजोत सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ ते टी डी मल्होत्रा रीतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा जयवीर सिंह ठाकुर डॉक्टर अमनदीप अनिल शर्मा कालका ते शुभचंद्र बजाज बिट्टा बजाज साहिल बजाज लो जी फिर इन्हां सारयां की फरमाइश ते सुन रहे हैं हंस राज हंस नूं

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਣੀ FM 100.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ। ਸਮਾਂ ਮਿਲਾਓ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਠੀਕ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी।

0: स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 100.2 MHz ते लाइव स्ट्रीमिंग जरिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते तुसी ट्यून इन कीता है आकाशवाणी दा पटियाला केंद्र। समा मिलाओ जी शाम दे ठीक 6:05 हो रहे ने ते हुण थोड़े नाल सांझा करदे हां प्रोग्रामां दा वेरवा।

0: आवाज़ विश्वास अते विरासत ते 90 साल दी कहानी आकाशवाणी
1: प्रोग्राम विच तुहानू फरमाइश आई है सुखबीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह, पिंड छाजली, जिला संगरूर तो आओ इन्हां दी फरमाइश ते सुनदे हां ये गीत।

0: तू सुन दे रही खड़के ओले
1: ए तू बा मेरे दर विच बोले
0: तू सुन दे रही खड़के ओले
1: नजर उस नाल कादी लड़ गई
0: तू बेवाले ते मर गई
1: नजर उस नाल कादी लड़ गई
0: तू बेवाले।

0: क्यों तू बातों हिक नू लाया
1: इस तू बे मेरा दिल फरमाया
0: क्यों तू बातों हिक नू लाया
1: इस तू बे मेरा दिल फरमाया
0: हुन तू रह गई तू बे जोगी।

0: हेलो,
1: हेलो। हाँ जी मैम, सत
0: सत श्री अकाल जी।
1: श्री अकाल जी। मेरा
0: नाम दस दो जी अपना।
1: नाम है गई धर्मपाल सिंह।
0: धर्मपाल सिंह जी, केड़ा गीत सुनना पसंद करोगे?
1: ये अपने माँ होंगी है, माँ प्रदीप मानक जी का। थैंक
0: ठीक है जी, कॉल करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुना देने थोड़ी फरमाइश थी ये गीत।
1: यू मैम।

0: हेलो,
1: हाँ जी, हाँ
0: सत श्री अकाल जी।
1: जी, सत श्री अकाल मैडम जी।
0: नाम दस दो जी अपना।
1: मैं निर्मला कुमारी बोल रही हूँ जी।
0: हाँ जी, निर्मला कुमारी जी, केड़ा गीत
1: हाँ जी,
0: सुनोगे
1: गाना कौन सा बताया? मोहम्मद रफी का।
0: जी? निर्मला कुमारी जी अपने श्रोता नूं दस दिए, इन्हां दा पोता है जी अनमोल। अनमोल एक स्पेशल नीड्स वाले चाइल्ड ने, स्पेशल चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स ने, ते आओ उन्हां दी फरमाइश ते सुनदे हां मोहम्मद रफी दा एक गीत।
1: ये तुसी
0: निर्मला
1: बात
0: जी
1: करो, मैडम जी बोलो। हाँ जी, सत
0: हेलो, सत श्री अकाल अनमोल जी।
1: श्री अकाल जी, कितना
0: वधिया जी, तुसी दस्सो।
1: वधिया।
0: ठीक है
1: और
0: जी, वधिया ही रहो जी,
1: मैं
0: थोड़ी
1: कौन? हाँ
0: चंगी सेहत की कामना करते हैं। तो आओ मोहम्मद रफी का एक गीत सुनते हैं।
1: जी, कौन?

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल जी। मैडम जी,
0: नाम दस दो जी अपना, ते कित्थों गल कर रहे हो?
1: जोगिंदर सिंह जी पात्रा तो बोल रहे हैं
0: जोगिंदर सिंह जी, केड़ा गीत सुनना पसंद करोगे?
1: जी। चोर मचाए शोर दा सुना दिया जी।
0: ठीक है जी, थोड़ी फरमाइश ते सुना दिन्ने। फिल्म चोर मचाए शोर दा एक गीत कॉल करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेहरबानी जी।

0: हेलो,
1: हेलो। हाँ मैडम जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी। नाम दस दो अपना।
1: मैडम जी, मैं सुच्चा सिंह समाणा रोड पिंड पछाणा तो बोल रहा, जिला पटियाला से जी।
0: हाँ जी, सुच्चा सिंह जी, केड़ा गीत सुनना पसंद करोंगे?
1: कुलदीप मालक जी करी सुना दो जी, मेरा बेटा गुरिंदर सिंह ते मनजीत सिंह सत श्री अकाल भेज देनी थोनू
0: सत
1: जी।
0: श्री अकाल जी। थोनू सुना दिने हैं कुलदीप मानक दा गीत।
1: हाँ जी, हाँ, धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू।

0: हेलो,
1: हेलो मैडम, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। नाम दस दो अपना।
1: मैडम, मैं राजपुरा टाउन जिला पटियाला तो सुरिंदर सिंह संधू बोल रहा जी।
0: हाँ जी, सुरिंदर सिंह संधू जी, केड़ा गीत सुनना पसंद करोगे?
1: मैडम, सब तो पहले अज मेरी थोड़े नाल इस प्रोग्राम में पहली बार गल हो रही है, तो 7 तरीक नूं गल हो रही थी करमजीत नाल, दाग फिल्म का गीत सुना है जी।
0: ठीक है जी,
1: अपना जेड़ा भी दिल चाहे सुना दो।
0: ठीक है जी, थोनू सुना दिने दाग फिल्म का ये गीत। कॉल करने लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू जी।

0: मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। ये भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुत शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
3: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
4: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
3: 33% इज फ्रॉम दी रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी एजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज

शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म देवा से। आवाज़ें मीका सिंह, विशाल मिश्रा और ज्योतिका टंगरी की थी। गीत के बोल राजेश शेखर के और संगीत विशाल मिश्रा का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: टेलीस्कोप।
1: तुम्हें याद कर दिल करते
2: छाया गीत
1: लग जागने।
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।

0: गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म बैंग बैंग से। आवाजें बेनी दयाल और नीति मोहन की, गीत के बोल अन्विता दत्त और कुमार के, और संगीत विशाल और शेखर का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोताओं, एक गीत आपने सुना फिल्म युद्धरा से, आवाज़ें विशाल मिश्रा और प्रतिभा सिंह बघेल की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की ज़बान नहीं होती।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

ये आवाज और इस आवाज की धार जिसके सहारे हर जज्बे ने किया सिंगार। जी हाँ, ये आवाज पंकज उधास की है। पंकज उधास हमारे आज के फनकार।

1980 का दौर होगा, जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे मेहदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे, और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी। मार्केट में गजल का एक एल्बम आया, आहट। ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की

1980 में आहट की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट, होटलों में गूंजने लगी।

17 मई सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम है। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है, इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवरंग के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

गजल की दुनिया में आने से पहले पंकज उधास को पार्श्व गायन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लायलपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली, मगर पंकज उधास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

उसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए। कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ, आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

बात करते हैं फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की। 1986 में नाम फिल्म में गीत गाने का उन्हें मौका मिला और वो गीत बेहद लोकप्रिय हुआ।

1990 में घायल फिल्म के लिए स्वर सम्राज्ञी लता जी के साथ गाने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और वो ड्यूएट भी बेहद पसंद किया गया।

ये दिल लगी नाम और फिर तेरी कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उधास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गाई गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाए फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उधास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

अपने कैरियर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में KL सैगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड।

2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहे।

आज के फनकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਜਨੀਗੰਧਾ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਫਿਲਮ ਕਭੀ ਕਭੀ ਵਿੱਚੋਂ।
1: Ladies and gentlemen, to have the fortune to listen to Lata Mangeshkar or Mukesh,
2: कभी जब उनको शरारत सूझती तो फिर किसी को नहीं छोड़ते थे। एक दिन मित्रा साहब से कह बैठे,
3: ये मित्रा साहब ने जो अंग्रेजी में कहा वो तो थोड़ा समझ में आया थोड़ा नहीं आया। हम आप लोगों की खिदमत में अब जो गाना गा रहे हैं वो है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे की तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा।

0: कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलीशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commando Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commando Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 34th honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defense, sustainability and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with a private English news daily, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening and the growing contribution of clean energy in powering countries' growth journey. Delhi Chief Minister Rekha Gupta today launched various development projects worth approximately 100 crore rupees in Dwarka Assembly constituency of National Capital. Addressing the gathering, the Chief Minister said that after completion of these projects, there will be significant improvement in problems such as water logging, damaged roads, sewer overflow and power supply in the area. Delhi Police has issued a memorandum regarding rationalization.